सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

मानव देह एक चलता फिरता मंदिर है और वो परमपिता परमेश्वर हर मनुष्यों के हृदय में विराजमान है, लेकिन मायावश जीव उस ईश्वर से दूरी बनाए बैठा हुआ है। शास्त्र कहते हैं, अगर हम समय समय पर अपने मन बुद्धि और वाणी से उसका सतत स्मरण करते रहेंगे तो वह हमेशा प्रकट है, लेकिन थोड़ी सी भी चूक होने पर हम मायावश भूल जाते हैं। इसलिए सदैव और सदैव सतत उसका स्मरण करते रहना चाहिए। ज्ञान ज्योति।

परमपिता परमेश्वर कृपालु हैं, दयालु हैं, जीवों पर सतत अकारण कृपा करते हैं। आइए उन परमपिता परमेश्वर का हम गुणगान करते हैं।

शास्त्र कहते हैं कलयुग में केवल हरि का नाम ही जीव को उतारने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जीव को सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीव को बंधन में डालते हैं और नेक कर्म ही जीव को बंधन से छुटाते भी हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए वंदना करते हैं शनिदेव की, जो न्याय के देवता हैं और सब जीवों का कष्ट भी हरते हैं जब जीव सच्चे हृदय से पश्चाताप कर उन्हें सुमिरन करता है।

आइए वंदन करते हैं उस महाशक्ति का जो इस अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं और इसका संचालन कर रही हैं और इसकी शक्ति कण कण में विराजमान है।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। शास्त्र कहते हैं जीव को सदैव प्रभु को सतत स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक नाम जीव को उतारने वाला है।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिव जी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचित मन से संगीतमय पाठ। हमारे आज के गायक कलाकार थे मिताली सिंह और साथी संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। समाचार प्रभात का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुनेंगे 8:30 पर। 8:35 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 9 बजे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हिंदी समाचार आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे। 10:05 पर आज लघु वार्ता होगी, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एक ही शीर्षक से। यह कार्यक्रम होगा 10:15 पर। 10:45 पर आप सुनेंगे पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लेके जाएंगे 11 बजे। 11:05 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम देवधरा के गीत। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज़ होंगे। दोपहर समाचार 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लिखे जाएंगे 3:30। 3:10 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से लिखे जाएंगे 5:05। 5:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पहाड़ी बोली में। यू मंच कार्यक्रम होगा 5:35 पर। 5:10 पर आज कार्यक्रम होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लेके जाएंगे 6:30। 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। किसान वाणी कार्यक्रम होगा 6:30 पर। हिंदी समाचार 7 बजे होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लेकर आएंगे। भक्ति सिंह सुनेगा 7:05 पर। रौनका अंगरानी यह कार्यक्रम होगा 7:25 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे 7:45 पर। 8 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आप, और 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लेकर आएंगे। 9 बजे News@9। 9:15 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आज शनिवार है, रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा रंगे गजल चांदनी रातें। ये कार्यक्रम होगा 10:30 पर। 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:55 हुए हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अशीत्यधिक चतुश्शत कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः सञ्चालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलाञ्च स्थापयिष्यति। श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 40 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राण्यपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रियारूपेण सिन्धु जलसन्धिः स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिन्धु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्तानद्याः समग्रप्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकाससाहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं सम्भावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अङ्गीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्यां मतदातृसूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांशरूपेण प्रायः 14,000+33,00,000 प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदातृगणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिम मतदातृसूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के ठीक 7:05 हुए हैं और इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।
2: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
3: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
3: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
3: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे साझा करेंगे आज का विचार, क्योंकि जैसा हम अक्सर कहते हैं, विचार ही हमारी दिन भर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, उसे एक नई दिशा देता है। तो विचार ये है कि आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, हर चुनौती में अवसर देखता है, हर आने वाली घड़ी का डटकर सामना करता है और विवेकपूर्ण ढंग से फैसले लेता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए आशावादी रहना चाहिए और हर परिस्थिति से निपटने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जो विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं सदैव और सदैव आगे बढ़ जाते हैं, आखिर सफलता उनके कदम चूमती है। और विचार के बाद अब आपको धीरे न करते हुए चलते हैं संगीत की ओर।

0: आशिक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
5: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
4: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
4: वो कैसे?
5: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
4: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
5: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
4: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
5: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
4: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
5: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
6: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। समय आपको बता दें 7:15 हुए हैं और ले चलते हैं आपको आज के इतिहास की ओर। सबसे पहले कनाडा की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट मुड़ी पहुंची। आज के दिन ही इडाहो 1890 में अमेरिका का 43वां प्रांत बना था और 4 जुलाई को ही इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1897 में लंदन में रेडियो का पेटेंट करवाया था। वर्दून का युद्ध 1914 में समाप्त हुआ था आज ही के दिन। लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण 1928 में हुआ था और लियो जिलार्ड ने 1934 में परमाणु बम के चेन रिएक्शन का पेटेंट भी आज के दिन यानी कि 4 जुलाई को ही करवाया था। द्वीप समूह फिलिस्तीन को 1946 में अमेरिका से स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश संसद के सामने 1947 में भारतीय बिल का प्रस्ताव रखा गया जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस ने 1952 में प्यूर्टो रिको के संविधान को मंजूरी भी आज के दिन इनके 4 जुलाई को ही दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1962 में अल्जीरिया की आज़ादी की घोषणा की थी। वियतनाम पर युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के आंकड़े जारी होने के बाद 1968 में युद्ध बंद करने का दबाव भी आज के दिन बढ़ा था। 105 यात्रियों वाला हवाई जहाज 1970 को स्पेन में लापता हुआ था आज ही के दिन यानी कि 4 जुलाई को। अमेरिकी रॉक बैंड द डोर्स के प्रसिद्ध गायक जिम मॉरिसन 1971 में अपने पेरिस स्थित घर में मृत पाए गए थे। दूसरे हावड़ा ब्रिज से कोलकाता में मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण 1989 में आज ही के दिन हुआ था। मक्का से मीना जाने वाली सुरंग में 1990 को भगदड़ मचने से 1426 हज यात्रियों की मौत हुई थी आज ही के दिन। रूस के राष्ट्रपति बोरिस यल्सिन 1996 में पुनः 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और अमेरिकी यान 1997 में सोल्जर मंगल ग्रह पर पहुंचा था आज ही के दिन। और आज ही के दिन ब्रिटेन के एक पावर बोट द केबल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे शीघ्र भ्रमण का रिकॉर्ड 1998 में आज ही के दिन बनाया था, यानी कि 4 जुलाई को भी बनाया था। पेस और भूपति ने 1999 में विंबलडन में पुरुष युगल का खिताब जीता था आज ही के दिन। भारत द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों बंदियों की रिहाई के निर्देश 2001 में आज ही के दिन हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में सन 2005 को डॉल्फिन की एक नई प्रजाति सन फ्रिन खोजी गई थी। महेश भूपति और मैरी पियर्स ने 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब आज के दिन जीता था। और एक परीक्षा पत्र में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के रूप में 8 हमलावरों ने 2010 में एक प्रोफेसर पर हमला करने की प्रयास करते हुए उन पर जबरदस्त प्रहार किए। वर्ष 2011 के विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच तथा महिला वर्ग में पेट्रा क्विटोवा चैंपियन बने थे आज ही के दिन। और 4 जुलाई को जिन महान हस्तियों का जन्म हुआ था उनमें सबसे पहले हैं चेक गणराज्य के विख्यात लेखक फ्रेंटस कैफ्का का जन्म 1883 में हुआ था। पश्चिम दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म 1898 में आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म 1916 में 4 जुलाई को ही हुआ था। भारत विज्ञान कोश निर्माण पाठालोचन अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा का जन्म 1947 में आज ही के दिन हुआ। और हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार का जन्म 1945 में आज ही के दिन हुआ था। टेनिस खिलाड़ी पाम श्राइवर का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। और जिन महान हस्तियों का निधन आज के दिन इनके 4 जुलाई को हुआ उनमें सबसे पहले हैं फ्रांसवा शाटोब्रियां नामक फ्रांसीसी शायर का निधन 1848 में हुआ था, जिन्होंने फ्रांसीसी साहित्य की सराहनीय सेवा की। साहित्य दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जयोनिज्म के संस्थापक थियोडोर हार्टजल का निधन 1904 में आज ही के दिन हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन 1963 में आज ही के दिन हुआ था। बॉलीवुड फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार भारत व्यास का निधन 1982 में आज ही के दिन हुआ था। गांधी शांति पुरस्कार विजेता व भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत गरहार्ड फिशर का निधन 2006 में आज ही के दिन हुआ था। और अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी हम आज के दिन के 4 जुलाई को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस भी हम आज ही मना रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं का जिक्र हमने आपसे आज से साझा किया। अब आपको पुणे लिए चलते हैं फिर से संगीत की ओर। कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गैम्बलर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताते हैं 7:30 हो चुके हैं। अब आपको हम लिए चल के ताज़ा तरीन आज की जो खबरें हैं हम आपसे साझा करने जा रहे हैं।

तो सबसे पहली अखबारों की सुर्खी है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आने की घोषणा की है। लक्सन ने यात्रा की तिथि का खुलासा किए बिना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घोषणा करते हुए मोदी के दौरे पर खुशी जताई। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी व तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।

अगली खबर है, जमीन से लेकर आसमान और समुद्र में भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और बढ़ेगी। सेनाओं की कामिकेज जैसे अत्याधुनिक ड्रोन और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल सिस्टम उसको मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अधिकारण परिषद की बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्तावों को वैज्ञानिक मंजूरी दी गई। श्री अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वालटाल और पहलगाम दोनों मुख्य मार्गों से हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। वालटाल मार्ग से रवाना हुए पहले जत्थे के कई श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का अलौकिक दर्शन करने के बाद कहा कि अद्भुत आनंद मिला। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी अपने पूर्ण आकार में विराजमान हैं। दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और आस्था की अलग ही झलक दिखाई दी। भारत ने फिर स्पष्ट किया है, जब तक पाकिस्तान हमेशा के लिए सीमा पार आतंक का रास्ता छोड़ नहीं देता, सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। भारत ने इस मामले पर कहा कि समझौते पर भारत की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा को सम्मान भेज मामले पर जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत बने चीन के 3 ऐप बैट, BMS, लासीजी और इपोच ली आइन को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया कि 2 ऐप तो हटा भी दिए गए हैं। हिमाचल से जुड़ी हुई खबरें भी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं जो आज की सुर्खियां बनी हुई हैं। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। किन्नौर जिले के चोलिंग में शुक्रवार तड़के बादल फटने से मलबे ने शिमला किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को चपेट में ले लिया है। हाईवे से गुजर रहे एक पिकअप को और एक स्कॉर्पियो को मलबे ने अपनी चपेट में लिया है। वाहन मलबे में दब गए हैं। वाहनों में सवार लोग समय से पहले ही बाहर निकल आए थे। पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण सोलन में वाहन पंजीकरण में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहुन खान को सोलन पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा है। अगली सुर्खी है, सरकारी बैठकों में घंटों की चर्चा, देर से शुरुआत और बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त होने वाली कार्यशैली अब बदलेगी। केंद्र सरकार ने नौकरशाही की कार्यशैली जो संस्कृति है उसमें सुधार करने के लिए IAS अफसरों को लंबी बैठकों के बजाय नतीजों पर जोर देने के लिए कहा है।

0: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उस जमीन का कब्जा उसके मूल मालिकों को वापस सौंपे जो करीब 50 साल पहले सरकारी स्कूल चलाने के लिए भूमि जो उन्होंने दान दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, जब उद्देश्य ही समाप्त हो गया जिसके लिए जमीन दी थी, तो सरकार को उसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगली सुर्खी है, यूं तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की आबोहवा बिल्कुल स्वच्छ है और घाटी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां के लोगों को बीमारियों का कम खतरा रहता है। बावजूद इसके हिमाचल में स्पीति घाटी में लोगों की पित्ताशय की पथरी जो है वो अब उनमें बढ़ोतरी का एक आंकड़ा देखा गया है। प्रदेश के इस उच्च हिमालय क्षेत्र में पित्ताशय गाल ब्लैडर स्टोन को लेकर किए गए एक 2 वर्षीय जनसंख्या आधारित अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये थी आज की ताज़ातरीन सुर्खियां जो हमने आपसे साझा की सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। लिए चलेंगे अब आपको सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम की ओर।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

0: हमराई फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

अंतराल के बाद अब आपको ले चलेंगे आज की खेल की दुनिया में। विश्व विजेता बनने के बाद पहली बार नॉकआउट मैच जीता स्पेन। साल 2010 के फुटबॉल विश्व विजेता स्पेन का 16 साल का इंतजार खत्म हो गया है। स्पेन ने बृहस्पतिवार को सोफी स्टेडियम में मिकेल ओयारजबल के 2 साल से चले इस प्रतीक्षा को 2 गोल से अंतिम 32 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। ओयारजबल स्पेन के लिए विश्व कप इतिहास में एक ही टूर्नामेंट में 2 बार 2-2 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व कप 1954 के बाद पहली बार नॉकआउट में पहुंची ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं पर समाप्त हो गया। कप्तान नेट सीवर ब्रंट की चोट के बावजूद खेली गई 75 रन की शानदार पारी की मदद से इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना रविवार को लॉर्ड्स में चिर प्रतिद्वंदी 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 23 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद ब्रंट और पूर्व कप्तान हीथर नाइट 58 ने चौथे विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी की, जिसे इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 169 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 129 रन ही बना पाई। 2010 के बाद अजय टीम में पहुंची फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में अब तक की एक मैच भी नहीं गंवाया। यह 2010 के बाद पहला अवसर है जबकि दोनों टीमें अजय रहकर फाइनल में पहुंची हैं। ओपनर तंजमीन ब्रिटस ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए चार्ली डीन और लॉरेन वेल ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें मरिजाने काप पर टिकी थी, लेकिन टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाली यह ऑलराउंडर केवल 5 ही रन बना सकी। और अगली खेल सुर्खी है, फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच को

हराकर चर्चा में आए 24वीं वरीयता प्राप्त ब्राजील के जोआओ फोंसेका शुक्रवार को विंबलडन के तीसरे दौर में गैर वरीय रूसी खिलाड़ी रोमन से जो है हार कर बाहर हो गए। सेफ्यूलिन ने 6-3, 6-3, 6-3 से जीत दर्ज कर पुरुष वर्ग के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अगली सुर्खी की बात करते हैं, फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल क्रोशिया के बीच 130 मिनट तक चले जोरदार फुटबॉल मुकाबले का रंग वीडियो असिस्टेंट रेफरी वीएआर के निर्णय के विवाद के जो बाद है फीका कर दिया गया है। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो व गोकालो रामोस के रिकॉर्ड गोल से जीत रही पुर्तगाल की आखिरी मिनट में क्रोशिया ने उसे बराबरी पर ही रोक दिया था, लेकिन वीएआर ने इस गोल को ऑफसाइड घोषित करके क्रोशिया का विश्व कप अभियान जो है उसको ख़त्म ही कर दिया है। पुर्तगाल 2-1 की जीत के साथ अंतिम में 16 में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला सोमवार को स्पेन के साथ होगा। अगली खेल खबर, खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर अनियमितताओं पर 7 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर TTFI पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें मंत्रालय से मान्यता खत्म की जा सकती है। और अगली खेल खबर है, भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा नजरें भारतीय ओपनर संजू सैमसन के प्रदर्शन पर होंगी। संजू बीते 3 मैचों में 5-0 और 1 रन आउट हुए हैं। दूसरे खिलाड़ी तिलक वर्मा हैं, जिन्हें फिनिशर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वह बीते 12 मैचों में 12 छक्के ही लगा सके हैं। पिछले मैच में वह 13 रन बनाकर जो थे अपना कार्य पूरा कर चुके। वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी संजू के साथ ही टीम प्रबंधन पर बना जो है उसका प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है। अगर संजू फिर विफल होते हैं तो वैभव को लेकर अड़ियल रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम प्रबंधन को इस खिलाड़ी को मौका देना पड़ सकता है। गेंदबाजी कोच मॉर्केल ने इस मैच पर कहा है, वैभव का दावा ठीक है, लेकिन पहले से मौजूद खिलाड़ियों पर भी भरोसा करना होगा। बारिश से बेनतीजा रहे पहले T20 में अभिषेक और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों से भारत ने 7 विकेट पर 199 रन बनाए थे, लेकिन अन्य बल्लेबाज ज़्यादा प्रभावी नहीं दिखे। खेल खबरों की सुर्खियों के बाद सुप्रभात हमीरपुर में, अब आपको ले चलते हैं फिर से संगीत की ओर।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी भाई भाई, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। जी हाँ, हम आपसे एक बार ये कहना चाहेंगे कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। देखिए, मनुष्य अपनी प्रकृति की कहानी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से लिखते हैं, लेकिन प्रकृति अपनी कहानी मौन संतुलन से लिखती है। यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई देती, फिर भी तेज़ गति से विकास होता है। कहने का अभिप्राय यही है कि बदलते मौसम में और बदलते हालात में हम प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बिठाएं। आजकल बहुत सी यात्राएं हमें टालनी होगी।

और नदी नालों के करीब नहीं जाना होगा और सदैव सतर्क रहते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाना होगा। प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना होगा। अपने सतत प्रयासों को सदैव करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आराधना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इसी गीत के साथ सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुप्रभात हमीरपुर।

अभी आप सुने थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़। कृपया अरले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 में लीजिए सुनिए हिमाचल डायरी का आज का अंक।

नमस्कार। हिमाचल डायरी के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। अब अंक विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मरीजों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाओं में जीरो वेटिंग टाइम, शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य मरीजों को समय पर और बिना किसी असुविधा के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति दूर कर दी है। भू अभिलेख निदेशालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक आवश्यक सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को क्रमशः 1 अक्टूबर 2024 से और 1 अक्टूबर 2025 से नियमित माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में किशोर न्याय प्रणाली की बदहाल स्थिति और मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 11 सिविल और सेशन डिवीजनों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के रैंक के जो हैं 11 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेटों के पद सृजित करने की मांग की है। सिफारिशों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने देश के सबसे बड़े औद्योगिक और निर्यात मंच बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक राज्य के व्यापार, निर्यात और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बर्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में DGFT के सैटेलाइट कार्यालय तथा ऊना में प्रस्तावित वल्क ड्रग पार्क में सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार की मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित टेबलेट लैपटॉप योजना में बदलाव हो गया है। सरकार ने अब 8,500 विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कूपन या ई वाउचर देने की जगह उनके बैंक खाते में सीधे 16,000 रुपये हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से 700 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी। वित्त विभाग ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर 13 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा कर दी है।

प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 13 से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के आयुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में मात्र आंचल भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान भी मौजूद रहे। ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम किसी न किसी स्वास्थ्य से संबंधित विषय को लेकर आते हैं, तो आज जो हमने विषय चुना है वो है स्नेक बाइट यानी सर्प दंश, क्योंकि बरसात का मौसम है और आजकल इन दिनों सांप जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। और कहीं अनजाने में सांप के ऊपर पैर पड़ जाए या फिर सांप को कोई खतरा महसूस हो तो उस स्थिति में वो काट लेता है। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में और किस तरह से इस स्थिति को गंभीर होने से बचाना चाहिए, इस सब के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं डॉक्टर बावेश, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सर्पदंश जो कि सुन के ही एक रोंगटे खड़े करने वाला विषय है, क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा तो वो एकदम से फौरन घबरा जाता है, कई बार तो सांप दिख जाता है और कई बार दिखता नहीं है। तो जैसे मान लो किसी अन्य कीड़े ने भी काटा तो ऐसे अपने आप में ये शंका होती है कि कहीं सांप ने ना काटा हो, तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको?
1: जी देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने नहीं देखा है कि आपको किस चीज ने काटा है, तो जरूर ये दिमाग में रखिए कि ये सांप हो सकता है
0: जी।
1: तो क्योंकि बचाव में ही हमारा बचाव है
0: जी,
1: तो सावधानी बरतें। उसको डिफ्रेंशिएट करने के कुछ तरीके होते हैं कि जैसे जो वहाँ सांप ने काटा है वहाँ पे खास तरह के दांतों के निशान होते हैं, लेकिन वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, वो आम आदमी या हमारे भाई लोग, हमारे जो श्रोता हैं वो इस चीज को नहीं बता सकते हैं
0: जी।
1: तो अस्पताल में जाइए, कहीं भी इधर उधर जाने से बेहतर है कि आप तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा या देखेंगे कि अगर सांप के काटने के लक्षण आपको आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे तेज दर्द आपको महसूस होगा, खून बहना शुरू हो जाएगा, सांप के जो दांतों के निशान होते हैं, जो
0: दो दांतों के निशान
1: होते हैं, वो बहुत टिपिकल से निशान होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये 100% केसेस में नहीं होता है
0: जी।
1: तो ऐसा देखना कि दांतों के निशान से आप 100% ये बता पाएंगे कि ये सांप नहीं काटा है, ये बहुत मुश्किल है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दूर दराज अगर गांव की बात करें तो उस स्थिति में जैसे किसी को कीड़े ने या सांप ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए फौरन
1: जी, जी,
0: ताकि हम समय रहते मरीज की जान बचा सकें।
1: जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है एक जनजातीय इलाका है, भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है कि आपको हर जगह अस्पताल उपलब्ध नहीं है
0: जी।
1: और जहां जो हैं भी तो वहां तक पहुंचने में बहुत आपका समय बर्बाद हो सकता है
0: जी।
1: मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो सांप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सांप जहरीले होते हैं और एक नहीं होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि 70% जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते
0: जी।
1: सिर्फ 30% सांप ही आपके जहरीले होते हैं, लेकिन हमें ये बता पाना कि कौन सा सांप जहरीला है कौन नहीं, ये भी एक एक्सपर्ट का ही काम है। तो आपको सांप ने काटा है आप तुरंत अस्पताल में जाने की कोशिश कीजिए, और अगर डिले होता है कि कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अस्पताल दूर है, तो उस स्थिति में सबसे पहले ये करें कि जिस भी हमारे भाई को अगर बहन को काटा है वहां उनको बताइए कि बिल्कुल ना घबराएं
0: जी,
1: घबराना नहीं है, उनको शांत रहने के लिए कहें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं उनके काटने के बाद वो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, तो उससे नुकसान और ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जहां पे भी आपको काटा है उस जगह को कुछ भी ऐसे दबाएं ना या उसको काटे ना कि खून बह जाएगा, या कई हमारे परंपरागत जो तरीके हैं आपको पता है कि घरेलू उपाय करना
0: जी, फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि जैसे सांप ने काटा वहां से चूस के वो खून निकालते हैं और जहर कम हो जाता है।
1: तो ये चीजें तो

0: ब्लड सर्कुलेशन आगे ना जा
1: जी
0: पाए।
1: जी उनका ये मानना होता है कि इससे
0: जहर नहीं,
1: जहर जो है वो वहीं पे रहेगा और शरीर में नहीं जाएगा।
0: जी जी,
1: लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप देखिए जोर से बांधेंगे तो वहां का जो रक्त प्रभाव है वो रुकेगा और वो जो आपका बाहर का हिस्सा है उसको काटना भी पड़ सकता है।
0: जी।
1: और दूसरी बात रही कि जहर फैलने की, तो देखिए जैसे ही सांप ने काटा है अगर वो जहरीला है तो आपके ब्लड में जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन इतनी फास्ट है वो तो वैसे भी
0: जी
1: आपके मतलब खून में है ही है, तो उसको आपको बांधने से नुकसान ही है, फायदा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उस हिस्से को आप धो सकते हैं कि ताकि जो जहर बाहर है वो ज्यादा शरीर में ना जाए। तो उसको धो लें और कम से कम हिलाएं, और जैसा कि मैंने कहा कि तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाएं, यही बचने का सबसे बेहतर उपाय है।
0: जी डॉक्टर, जैसे गांव की हम बात करते हैं तो बहुत सारी धारणाएं रहती हैं। एक तो हमने कहा कि जैसे रस्सी से बांध दीजिए, दूसरा ये है कि मरीज को सोने नहीं देना या उसको कुछ खाने को नहीं देना। तो मैं इस विषय में और आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हमें और क्या क्या काम कर लेने चाहिए ताकि मरीज की जान बच सके।
1: जी जी, देखिए इस बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि सोने ना दें, तो ये जो है एक लक्षण है।
0: जी।
1: जब सांप काटते हैं तो हमारे जो सांप का जहर है वो दो तरह का होता है।
0: जी।
1: एक जिसे हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, और दूसरा ही हेमाटोटॉक्सिक।
0: जी।
1: न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है
0: जी।
1: उस पे ये प्रभाव डालता है। जब तंत्रिका तंत्र पे ये प्रभाव डालेगा तो आदमी को नहीं आएगी, लेकिन आंखें बंद होने लगेंगी, मतलब पलकें भारी हो जाएंगी।
0: जी।
1: पलकें भारी होंगी तो पलकें खोल नहीं पाएगा, तो दूसरे जो व्यक्ति है उनको यही लगेगा कि इसको नींद आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये जहरीला सांप है, और तुरंत आप नजदीकी अस्पताल में जाके जो हमारे ASV जिसे बोलते हैं या वो लगवाएं इंजेक्शन, या विशेषज्ञ जो है वो देखेंगे तो अपने जो हिसाब से जब लगाना होगा इंजेक्शन तो वो लगाएंगे। तो जान बचाने का वही एक सबसे बेहतर तरीका है।
0: जी।
1: बाकी रही जो खाने की बात, और खाने को उस टाइम पे तो ना ही दें कुछ भी।
0: जी।
1: कोई भी जैसे घरेलू दवा या हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं तो वो चीजें तो नहीं करनी चाहिए।
0: जी, खाने पीने को कुछ भी नहीं देना चाहिए मरीज को,
1: कुछ भी ऐसा ना दें।
0: जी।
1: क्योंकि आपको ये हो सकता है कि आगे जाके अगर जहरीला सांप है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो हमारे तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालेगा तो फिर बेहोशी में जा सकते हैं, तो वो फिर आपको सांस की नली में भी खाना जा सकता है, तो उससे और ज्यादा
0: दिक्कतें
1: हो सकती हैं। जी
0: जी डॉक्टर साहब, जानकारियों के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम में श्रोताओं का मनोरंजन भी करवाते हैं।
1: जी,
0: तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, हम आपकी तरफ से चाहेंगे कि आप अपने पसंद का कोई गाना बताएं तो हम भी सुने उसको और हमारे श्रोता भी सुने।
1: मैं एक किशोर कुमार जी का गाना है पल पल दिल के पास।
0: अरे वाह,
1: वो मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी, और ये मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें ये डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: जी डॉक्टर साहब, तो चलिए आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम फिर से अपने विषय पर आ रहे हैं कि सर्पदंश है, किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, तो उस स्थिति में जब वो हॉस्पिटल में आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं?
1: जब भी सर्पदंश या स्नेक बाइट होता है तो हमारे अस्पताल में मरीज जब पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं लोकल जो साइंस है, मतलब जहाँ पे उसे काटा है वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे उसको बहुत तेज दर्द है, वहाँ से खून बह रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन हो गई है, लाल या नीला हो गया है, तो ये सारे लक्षण है, ये जहरीले सांप के काटने के हैं।
0: जी।
1: और दूसरा एक होता है सिस्टेमिक,
0: जी,
1: कि मतलब जब खून में जहर आ गया है तो उसकी वजह से फिर वो हमारे तंत्रिका तंत्र पे या हमारे खून को जमाना शुरू करेगा या हमारे जो हमारी किडनीज हैं उन पे प्रभाव डालेगा, तो उसकी वजह से फिर किसी एक भी एक चीज के या एक व्यक्ति के दो दो दिखना,
0: जी जी,
1: या सांस लेने में मुश्किल होना, या पैरों में और हाथों में बहुत ज्यादा कमजोरी, या पेट में बहुत दर्द होगा, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें चक्कर या ऐसे बेहोशी भी हो सकती है।
0: जी
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, क्या कोई इन्वेस्टिगेशंस भी रहती है जिसके आधार पर आप ये निर्णय ले पाए कि ये सांप जहरीला है या नहीं जहरीला, तो किस तरह से उसको ट्रीट करना है?
1: जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एक यही रहती है कि खून का जमना हम देखते हैं।
0: जी।
1: तो जो भी हमारे पास मरीज आते हैं जिन्हें सर्पदंश हुआ है तो हम उनका जैसे 5 ml या 7 ml तक खून लेते हैं और उसको एक शीशी में डालते हैं और उसको देखते हैं कि 20 मिनट तक वो जमता है या नहीं जमता है। फिर उसका हमें वही जो मैंने बताया कि ASV जिसे एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, हमारी नॉर्मल भाषा में आप बता सकते हैं कि विषरोधी जो दवा है, जो इंजेक्शन है, फिर वो उन्हें दिए जाते हैं। आपका जो सर्पदंश और हॉस्पिटल टाइम है अगर वो कम हो जाए,
0: जी,
1: 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए, जो जहर है सांप का खून में ही होता है, सर्कुलेशन में ही होता है, वो हमारे जो अंगों में है जमा नहीं है, जैसे दिमाग में या किडनी में वो जमा नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो हमारी विषरोधी दवा है उसको देके। लेकिन जितना ज्यादा विलंब होगा, डिले होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हों।
0: जी
1: जी,
0: क्योंकि अक्सर अगर गांव की बात करें तो लोग क्या करते हैं, जैसे पता चल गया कि किसी को सांप ने काटा तो वो अपने नजदीक कहीं देखते हैं कि कोई ऐसे झाड़ फूंक करने वाले लोग हो, तो सबसे पहले वो उनके पास जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जैसे सर्पदंश किसी को हुआ है वो हॉस्पिटल में जितनी जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी उसके बचने के चांसेस होते हैं या ट्रीटमेंट उसका बेटर हो सकता है।
1: अस्पताल में तुरंत से तुरंत पहुंचे, बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आप ये ना सोचें कि ये सांप जहरीला है या नहीं है, आपको ये भी लगता है कि सांप है या नहीं है, शायद जैसे होते हैं हमारे कई भाई लोग दिखते नहीं है, नीचे सोए होते हैं, रात को कुछ किसी चीज ने काट लिया, कुछ निशान भी आप नहीं बता सकते कैसे नहीं, लेकिन आप अस्पताल जाएं, वो डॉक्टर देखेगा कि हाँ ये सांप ने काटा है या नहीं काटा है, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, तो कुछ अगर आपके जहरीले सांप

0: के लक्षण आते हैं तो उसको दवा फिर दी जाएगी।
1: जी,
0: जी
1: तो ये तो ट्रीटमेंट की बात की हमने, एक और गाना हम आपकी फरमाइश का यहाँ पे सुनना चाहेंगे।
0: जी, दूसरा गाना मैं अभी जो फिल्म आई है संजू,
1: जी
0: उसका बहुत ही एक मशहूर गाना है, कर हर मैदान फतेह। तो
1: अरे वाह, मोटिवेशनल सॉन्ग है ये।
0: तो वो मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं ये गीत।
0: जी

0: तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे कि सर्पदंश से बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी या किसी भी आपदा से बचने के लिए अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस या सावधानियां रखें तो हम काफी हद तक बचाव कर सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्या-क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं।
1: जी तो बचाव करने की यही है कि बरसात का मौसम है, वो सांप जो है अपने बिलों से बाहर आते हैं और घरों में घुस जाते हैं। तो स्थिति में यही है कि रात में आप जब भी बाहर निकलें
0: जी
1: तो आप ये है कि अपने पास टॉर्च लेके चलें
0: जी
1: और हमेशा जूते पहन के जाएं,
0: जी
1: चप्पल में ना जाएं। तो
0: जी
1: कम से कम अगर भगवान न करे कोई सांप ने काट भी लिया तो वो
0: जूतों तक ही
1: जूते
0: सीमित
1: जूतों तक ही
0: रहेगा।
1: सीमित रहे,
0: जी
1: हमारे खून में ना जाए।
0: जी
1: और उसके बाद हमेशा टॉर्च लेके चलें अगर जाना
0: जी
1: है तो। और जब भी हम चलते हैं तो बताया गया कि जैसे जो सांप होता है वो सुन नहीं पाता है, लेकिन वो वाइब्रेशंस को बहुत महसूस करता है।
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: जब भी चलें तो भारी पांव रखें, जोर से
0: जी
1: पांव रखें, ताकि अगर सांप आपके नज़दीक कहीं है तो वो वाइब्रेशन से, वो डर से वहां से भाग जाएगा या चला
0: जी
1: जाएगा।
0: जी
1: तो एक ये उपाय है। अभी जैसे कि बरसात में आपको पता है कि हमारे घास बहुत लंबी हो जाती है और बहुत
0: हाँ, बड़ी जल्दी
1: ज़्यादा
0: ग्रो करती
1: बहुत
0: है।
1: ज़्यादा ग्रो करती है,
0: जी
1: तो उस केस में अगर जब घास में हमने जाना है तो हमेशा छड़ी का आप यूज़ करें, प्रयोग करें,
0: जी
1: ताकि
0: काटने से
1: घास,
0: पहले घास को थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: हिला लें।
1: जी जी
0: जी
1: क्योंकि बहुत सारे सर्पदंश हमने देखा हमारे भाई बहनों को उस टाइम होते जब वो
0: हाँ
1: घास
0: जी
1: काट रहे होते हैं।
0: जी
1: तो कोशिश करें कि हमें पहले आगे छड़ी से घास को इधर उधर या साफ करें, ताकि वो
0: हाँ,
1: हो अगर सांप तो वो इधर उधर चले जाएगा।
0: चले जाए।
1: और दूसरा ये है कि जमीन पर ना सोएं,
0: जी
1: जमीन पर सोने से भी बहुत ज्यादा सर्पदंश के हमने केसेस देखे हैं।
0: जी
1: तो बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो जमीन पे सोते हैं किसी भी कारण से,
0: हाँ
1: तो कोशिश करें कि हो सके बिस्तर पे ही सोएं।
0: जी
1: और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चीज अंधेरे में, जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है कभी, या कोई चीज हमने लेनी होती है ऊपर सेल्फ है, तो हम ऐसे ही हाथ डाल देते हैं
0: जी
1: कि ये चीज उठा
0: हाँ,
1: लो।
0: घर में तो पता होता है कि ये
1: जी
0: चीज वहां पे
1: वहां
0: मिलेगी,
1: पे
0: तो हम
1: मिलेगी
0: अंधेरे में
1: तो
0: भी उस चीज को हम ढूंढ लेते
1: बिल्कुल।
0: हैं,
1: तो अगर अंधेरे में तो आप, मैंने जैसे
0: टॉर्च
1: मैंने
0: का
1: बताया टॉर्च का
0: सहारा।
1: आप इस्तेमाल करें, और कभी भी हाथ ऐसे ना डालें, ऐसे किसी भी चीज को उठाने के लिए आपने एकदम से हाथ डाल लिया तो
0: जी
1: उसमें थोड़ा सावधानी बरतें कि बहुत दिनों से आपने कोई जूता नहीं पहना है, या
0: जी
1: आपने रोज भी पहनते हैं इवन तब भी आप, कि इन वही छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी सावधानी है, अगर आप हम उन्हें बरतेंगे तो इस बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते
0: बच
1: हैं।
0: सकते
1: जी
0: हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आपने सर्पदंश के बारे में हमारे श्रोताओं को इतने विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा आप हमारे श्रोताओं को कोई इससे संबंधित मैसेज देना चाहें?
1: जो बचने के उपाय हमने अभी बताए वो करें,
0: फॉलो
1: और
0: करते
1: फिर
0: रहें।
1: भी अगर दुर्भाग्यवश कभी सर्पदंश हो भी जाता है तो बिल्कुल घबराएं ना, शांत रहें,
0: जी
1: शीघ्र से शीघ्र जो है अस्पताल जाएं, झाड़ फूंक के चक्करों में ना पड़ें, कोई मणि कुछ पत्थर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको कि 70% जो हमारे सांप हैं वो जहरीले नहीं
0: नहीं
1: होते।
0: होते।
1: तो जब देखिए आप जब भी किसी व्यक्ति को सर्पदंश होता है, अगर वो किसी मणि वाले बाबा या संत्र मंत्र वाले बाबा के पास जाता है तो कुछ केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो क्यों होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 70% जहरीले हैं ही नहीं,
0: जी
1: तो
0: हाँ, तो
1: उसमें
0: उस
1: फिर
0: स्थिति में फिर लोगों का विश्वास बन जाता
1: विश्वास
0: है कि
1: और बढ़
0: सांप
1: जाता
0: ने
1: है
0: काटा और वहां
1: कि
0: गया वो
1: सांप ने
0: ठीक हो
1: काटा,
0: गया।
1: वहां गए वो ठीक हो
0: हाँ
1: गए, तो
0: हाँ
1: मतलब
0: जी
1: वहां पे असर हो रहा है,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: वो तब होता है, क्योंकि
0: जी
1: सिर्फ 30% केसेस में ही आपके जो है वो जानलेवा होता है।
0: जी
1: और मैं जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हूँ पोस्टेड, तो वहाँ पे हमारे 24 घंटे सर्पदंश के उपचार की
0: जी
1: और जो विषरोधी दवा है वो मुफ्त में उपलब्ध है। आप किसी भी वक्त वहाँ पे आइए प्लीज, और जल्दी से जल्दी आइए। मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगा कि जितना समय कम होगा सर्पदंश और अस्पताल पहुँचने के बीच का, उतना ही मरीज को फायदा होगा, और
0: जी
1: उनके बचने की और कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावनाएं हैं उतनी ही कम होगी।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने हमें सर्पदंश के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

ये कैसा इश्क है, धड़क टू फिल्म का गीत रोचक कोहली और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था, रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। एक और ब्रेक छोटा सा,

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको मोहरा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें उदित नारायण अलका याग्निक की हैं।

मोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक की थी, आनंद बख्शी के बोल थे, विजू शाह का संगीत था। दोस्तों, बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू मन को नई नई ऊर्जा से भर देती है। यही मौसम हमें प्रकृति के सबसे अनमोल उपहार वृक्षों का, पेड़ पौधों का, वनों का याद दिलाता है। इसीलिए हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ हमें केवल छाया ही नहीं देते बल्कि हमारी सांसों के, हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें प्राणवायु देते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और तमाम जीव जंतुओं का आश्रय भी बनते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने है, तब एक पौधा लगाना कितना ज़रूरी है। ये पर्यावरण की सेवा होगी। अगर प्रत्येक घर में हर एक इंसान या हर घर में एक कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है अपने पूरे जीवन में, तो सोचिए कितने पेड़ हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। ये आवाज़ें सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला की है।

0: सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने इन लोग क्या करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

फिर से बहुत स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: आज सब तेरे हैं, मैं तो जला के छोड़ूंगा, जिंदा बचेगा ना कोई, सबको मिटा के छोड़ूंगा।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 9:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, कृपया लेके प्रतीक्षा कीजिए।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उठाए व्यापार पर निर्यात संवर्धन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए इस महीने लेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मानसून को लेकर अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें हाल ही में 7 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वे कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे राज्य की समृद्ध विरासत व विशिष्ट उत्पाद पहचान को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में एक जिला 3 उत्पाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना व स्थानीय उत्पादों के बाजार का विस्तार करना है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित निर्यात संवर्धन अभियान के तहत भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों व जिला आधारित उत्पाद पहलों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों सहित निर्यात संवर्धनों कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य में व्यापार को सुदृढ़ करने, निर्यात बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने सहित निवेश आकर्षित कर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहलों व आवश्यकताओं को विस्तार से रखा। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के सोलन, सिरमौर और ऊना जिले में 4 प्रस्तावित औद्योगिक समूहों के परियोजना प्रतिवेदन अंतिम चरण में है और शीघ्र ही उन्हें केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। ये ऋण विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ़कर 1,11,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। कर्ज की ये रकम 13 साल बाद ब्याज सहित लौटानी होगी। नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज शाम को शिमला में मशाल जुलूस निकालेगी। इस मार्च में प्रदेश मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह मशाल जुलूस 6 बजे शेरे पंजाब के पास से शुरू होकर रिज मैदान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और अब नगर पंचायत और नगर परिषद में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित BDC अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा गुटों में बटी हुई है और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।
1: भाजपा की जिला परिषद भी बनी है, कई जिलों में बनी है, MC उनकी बनी है, वहाँ तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे बेशक हमारी बहुमत नहीं थी, भाजपा को बहुमत मिली तो उन्होंने बनाए, यहाँ पे हमारी है, वहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो आरोप लगाने की आदत बन चुकी है, मगर इनको जो अंतर कले आज भाजपा के अंदर है, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने ग्रुप को ऊपर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मगर इसका कोई औचित्य नहीं है। बेबुनियाद आरोप है, जनता को भ्रमित करने के लिए है।
0: जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद यात्रा की शुरुआत तड़के ही दोनों आधार शिविरों से हुई। आधार शिविरों से संबंधित उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने हरी झंडी दिखाकर पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों सहित साधुओं को रवाना किया। तीर्थयात्रियों ने बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे अग्रिम पंजीकरण करने के बाद ही तीर्थ यात्रा शुरू करें और अपनी निर्धारित यात्रा तिथियों का पालन करें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों व उनके सशक्तिकरण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऊना के जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, नवाचारकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रदान किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी जिले के करसोग में 3 दिवसीय एंटी चिट्टा बैडमिंटन प्रतियोगिता का SDM गौरव महाजन ने कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को नशे से रोककर उनका मानसिक व शारीरिक विकास करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों से खेल से जुड़ने और चिट्टे जैसे खतरनाक जहर से दूर रहने का आह्वान भी किया। 5 जुलाई तक खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 स्कीमें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य वर्षा होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मॉनसून की वर्षा को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर विभाग के साथ जल्द ही रिव्यू बैठक की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भूस्खलन और सड़क बाधित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी तैनात की जाएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। उन्होंने ये भी कहा कि से बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष रूप से फोकस रखा जाएगा, ताकि बागवान अपनी फसलों को मंडियों तक आसानी से पहुँचा सकें।
1: पूरी तरीके से तैयारी है मेरी, अभी हम लगातार उस पर डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं एक दो दिन में मैंने पूरी रिव्यू बैठक रखी है डिपार्टमेंट के सभी चीफ इंजीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, SCs के साथ, और उसमें हम पूरा एक रिव्यू लेंगे। जहां पर मशीनरी लगनी है, चाहे उसमें JCB लगनी है, पोकलेन मशीन लगनी है आपके, और उसमें एक्सकोवेटर्स लगने हैं, वो लगाए जाएंगे, इन एंटिसिपेशन लगाए जाएंगे। पर्टिकुलरली जो हमारे से बहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके है, वहां पे खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी दुर्घटना ना हो।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, स्कूल बंद होने पर सरकार को लौटानी होगी दान में मिली जमीन। जबकि पंजाब केसरी की एक खबर है, आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश। अमर उजाला की एक सुर्खी है, हिमाचल में जॉब ट्रेनी को भी 15 दिन का मिलेगा पितृत्व अवकाश। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, बीमारी के निदान संविधान में हो जीरो वेटिंग। वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, किन्नौर में लगातार दूसरे दिन फ्लैश फ्लड, मलबे में 2 गाड़ियां दबी। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द है, मानसून की भयंकर शुरुआत, 3 दिन में 14 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उठाए व्यापार पर निर्यात संवर्धन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए इस महीने लेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में दर्शन। दिव्यांग जन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। और मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मॉनसून को लेकर अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।

गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी बांसुरी ने मधुरता पैदा की है। और कई गाने ऐसे हैं जहां सुनाई देती है उनकी शहनाई की मीठी तान।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था,

सन 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक, भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

0: बोल पढ़े अम्बे चंद्रबाल नाद बोल।
1: सन 1960 में आई माया मच्छिंद्र। इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा, जा, जा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे।
1: तुम तो रहो सलाम।

0: फिल्म सेहरा का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। आपको बता दें, इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया है।
1: तू

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगे। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे, टांगा वाला पी एस संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर वैजयंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से हुसन बानू बनी, वो गाना खरीद कर हुसन बानू बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंडवे तले हरी ठुके दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल जो मिला है तुझको जीने के लिए।
0: दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था, और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

0: बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004, बारिश के दिन, संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह ने की।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
4: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
3: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लघु वार्ता। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस।

जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 के विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय जो है आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां घोषित करना। जी हाँ, आपको पुनः बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 का विषय है आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां घोषित करना, जो विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय, समावेश और एकजुटता को आगे बढ़ाने में सरकारी और सहकारी उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम आज 4 जुलाई को मना रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के सहकारी आंदोलन, सरकारें और सहयोगी एक साथ आएंगे। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास में सहकारिता के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस वर्ष का विषय इस बात पर बल देता है कि सहकारी समितियां लोकतांत्रिक भागीदारी, आर्थिक समावेशन और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देकर शांतिपूर्ण समाजों के निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं। साझा स्वामित्व और जन केंद्रित मूल्यों पर आधारित सहकारी समितियां समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने के लिए सक्षम बनाती हैं, जिससे असमानताओं को कम करने और सामाजिक एकता की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर जो है आपसे विस्तार से चर्चा की जा रही है। यह विषय इस दीर्घकालिक सिद्धांत से भी गहराई से मेल खाता है कि स्थायी शांति सामाजिक न्याय पर आधारित होनी चाहिए। समावेशी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियां समान विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में समुदायों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से वैश्विक सहकारिता आंदोलन द्वारा मनाया जाता रहा है और 1995 से संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय से सहकारिता संवर्धन एवं विकास समिति COPSC द्वारा विषय का चयन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बाद इस मुहिम में मिली गति के साथ 2026 का आयोजन समावेशी विकास और शांति के चालक के रूप में सहकारिता की भूमिका को सुदृढ़ करने और विश्व स्तर पर अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाजों की दिशा में कार्रवाई को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के तहत इन संस्थाओं के भूमिकाओं और सामाजिक नीतियों के उद्देश्यों और विभिन्न प्रकार के समाधानों से समय समय पर अवगत करवाता रहता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जैसे कि हमने कहा, हर साल जुलाई के हम पहले शनिवार को मनाते हैं और आज भी शनिवार है। एक ये वैश्विक उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों की गतिविधियों का हम जश्न मनाते हैं और उनके द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास में दिए गए योगदान को रेखांकित करते हैं। इस दिवस से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इतिहास में पहली बार ICA द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन द्वारा, इसे मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में एक प्रस्ताव पारित करके इसे आधिकारिक मान्यता दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य दुनिया भर में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, आपसी सहयोग तथा आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना। हर साल हम इस दिवस को मनाते हैं ताकि सहकारिता के संवर्धन और उन्नति में हम विशेष कार्य कर सकें। इस दिन दुनिया भर की सहकारी संस्थाएं, सहकारी विभाग और नागरिक संगठन सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सहकारिता के फायदों का प्रचार करते हैं ताकि इस मुहिम को बल मिल सके।

सहकारिता के क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है, जिसकी देखरेख केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय करता है। भारत में प्राथमिक कृषि शाख समितियों और उनका डिजिटल और बाइट रेवोल्यूशन जैसी योजनाएं इस क्षेत्र को मजबूत तौर पर आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और संस्थाएं भी स्थापित की जा रही हैं। विश्व स्तर पर रॉबर्ट ओवेन को सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे लघुवार्ता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 10:15 होने को हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक है हम। सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

हमसे ना टकराना, मोहम्मद अजीज़ और साथियों को भी आपने सुना, और आज का शीर्षक भी हम है। मैं हम शब्द जो है वो बहुत मायने रखता है। मैं और आप और सब मिलकर कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम हो जाते हैं, और हम में वो ताकत है कि दुनिया की एक नई इबारत लिखी जा सकती है।

हमसे मिले तुम, अभी आपने गीत सुना और आज का शीर्षक भी है हम। जी हाँ, हम आपसे यही भी कहना चाहेंगे कि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, तो ज़माना हमारे साथ चलता है।

कार्यक्रम एक ही शीर्षक से आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। आज का शीर्षक है हम। चलिए, जब दो लोग मिलकर चलते हैं तो दोस्ती और गहरी हो जाती है और ये दोस्ती आदमी को बहुत खुशियां भर देती हैं। तो चलिए हम भी सुनते हैं एक गीत।

शोले फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी किशोर कुमार मनाडे और साथियों की। कार्यक्रम एक ही शीर्षक से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है दूध का कर्ज। आवाज़ें मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और साथी।

0: अभी आप सुने थे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग।
1: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम से थोड़ा फिर स्वागत है। देखा साढ़े हिमाचली लोकगीत की खासियत क्या है कि समय समय पर लोकगीत बने हैं। हिमाचल की लोक संस्कृति, हिमाचल की एकता, प्रेम, भाईचारे च लोगों के बारे च हर तरह के लोकगीत रहन। लेकिन चलो हम तुम एक पूरे कुछ थोड़े बीते जमाने चले चलना, जल अस टपरुए पाने की गल करते थे, तो सिक्कें करते थे और सुनने संगीत के माध्यम से।

0: इसी गीते सौगी अज का कार्यक्रम लोक रंग इथ संपन्न हों। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, प्रातः के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिनमें हाल ही में 7 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वे कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे राज्य की समृद्ध विरासत व विशिष्ट उत्पाद पहचान को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में एक जिला 3 उत्पाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना व स्थानीय उत्पादों के बाजार का विस्तार करना है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित निर्यात संवर्धन अभियान के तहत भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों व जिला आधारित उत्पाद पहलों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। ये ऋण विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ़कर 1,11,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। कर्ज की यह रकम 13 साल बाद ब्याज सहित लौटानी होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और अब नगर पंचायत और नगर परिषद में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित BDC अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और चुनाव तरह निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों व उनके सशक्तिकरण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऊना के जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, नवाचारकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रदान किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज शाम 6 बजे शिमला में मशाल जुलूस निकालेगी। इस मार्च में प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी जिले के करसोग में 3 दिवसीय एंटी चिट्टा बैडमिंटन प्रतियोगिता का SDM गौरव महाजन ने कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को नशे से रोककर उनका मानसिक व शारीरिक विकास करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों से खेल से जुड़ने और चिट्टे जैसे खतरनाक जहर से दूर रहने का आह्वान भी किया। 5 जुलाई तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 स्कीमें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य बारिश होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मॉनसून की वर्षा को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर विभाग के साथ जल्द ही रिव्यू बैठक की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2 PM 3 PM। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़े ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बदरा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बदरा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घुमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घुमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज़ है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती हैं जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना? तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारे बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रियतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

तो ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे देवधरा के गीत।

देव दरादे लोकगीत सुनने वाले सारे श्रोतियाँ जो असंदा प्यार भरा नमस्कार कने आवा कार्यक्रम की शुरुआत च सुनते हैं एक लोकगीत जिहदा नाँ है बारामासा। ये बारामासा लोकगीत जिहड़ा है बरिया के उपर है खास करी साढ़े जिहड़े पहाड़ी इलाके हैं इन्हां च ये बड़ा सुप्रसिद्ध है।

0: अंजना कुमारी ओम प्रकाश दी आवाज़ तो सां इह लोकगीत बारह मास सुनिया। जियां कि असां तुहानूं दस्सिया था कि बारह मास जिहड़ा लोकगीत है बदलदे मौसम च कने विरा दे भरे इह लोकगीत हुंदे, तो इस करके साड़ी संस्कृति च खास करी साड़ियां जिहड़ियां पारमिक भावना ते इहनां जो व्यक्त करने ताईं इह लोकगीत जिहड़े हन खास मायना रखते हन। तां चल हुण लैंदे ने इक अंतराल, उस दे बाद तुहाडे सोगी बाकी कार्यक्रम असां प्रस्तुत करना।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम च तुहाडा फिर स्वागत है। कार्यक्रम तो सुना करते हैं देवधरा के गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के गीत, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों, अभी आपने एक गीत सुना, फिल्म थी देवदास, आवाजें सुब्रमण्यम और के की।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल का क्या कसूर। सैनिक भाइयों, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू और आशा भोसले की। इसी के साथ आवाज़ का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर का 1 बजा है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। 2:15 पर आप सुनते हैं दोपहर समाचार।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारा ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब है ना, बेकरार है ना। चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना, लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी

मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ। बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफ आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है, जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है, और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है, और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे, जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गज़ल को आप पसंद

कर रहे हैं। वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गज़लें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियाँ जिसने आपको आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियाँ हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियाँ बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सूलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा है विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत, भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतार जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट आकर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल।
1: है सबसे

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गज़ल में हमें नज़र आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं, राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज़्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गज़ल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गज़ल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गज़ल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गज़ल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गज़ल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गज़ल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियाँ हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहाँ फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गज़ल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गज़लें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गज़ल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज़ में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आ रहा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गज़ल की ये गज़ल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गज़ल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गज़ल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गज़ल की शर्तों में आती है। ये गज़ल उस नियम वो दायरा जो है गज़ल का उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गज़ल, फिल्म का नाम गज़ल, आवाज़ लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियाँ, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गज़ल क्या है आपने उसको महसूस, आज के इस कार्यक्रम को, इस सफ़र को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और

0: में टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद।

0: पाठक।
1: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: बस में अभी अपनी फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का 2 गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत कहाँ

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी अपनी फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान से संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। 28,840 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास के अगले चरण को गति देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल और

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने सहित कांग्रेस के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर आज बैठक में मंथन किया गया।

0: जो है उनके साथ बात करेंगे।
1: प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश की 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। राज्य में वर्षा

0: हो रही भारी बारिश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बीते तीन चार दिन से लगातार बारिश के कारण जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी नालों, खड्डों और संवेदनशील क्षेत्रों से
1: और पिछले तीन चार दिन से जो है लगातार काफी ज्यादा बारिश हुई है धर्मशाला और उसके आसपास कुछ देखी गई है, तो नदी नाले अभी उफान पर आ चुके हैं और स्पष्ट निर्देश जो है इसमें रहेगा, चाहे वो पर्यटक हैं चाहे स्थानीय लोग हैं, भी नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। इवन जो जानवर वगैरह चलाने के लिए लोग जाते हैं तो वो भी परहेज करें, ताकि किसी प्रकार का जानी माली नुकसान जो किसी को भी ना उठाना पड़े।

0: हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है ऊर्जा संकट के बीच आम नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखने को मिली। कई देशों में कच्चे तेल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे समय में भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों को राहत देना और आवश्यक ईंधन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना रही। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार ने शुरुआत से ही ये तय किया कि किसी भी भारतीय परिवार को रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक ऊर्जा सेवाओं की कमी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और विभिन्न राज्यों के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया गया। पूरे देश में ईंधन की उपलब्धता पर नियमित निगरानी रखी गई ताकि कहीं भी आपूर्ति बाधित न हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद भारत ने कई देशों से वैकल्पिक व्यवस्था की और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए जिससे देश में गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उपभोक्ताओं तक रसोई गैस समय पर पहुंचे। इसके लिए वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया और डिजिटल सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया ताकि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। इससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके और किसी भी क्षेत्र में कृत्रिम कमी पैदा न हो। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को विशेष राहत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी का भार खुद वहन किया जिससे

उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल वर्तमान स्थिति को संभालने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कच्चे तेल के आयात के स्रोतों में विविधता लाई है। अब देश पहले की तुलना में अधिक देशों से

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल।

यह अवस्थ थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: चाहे
0: दोस्तों, आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी।

0: महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा, तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
4: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्यपुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतार

0: अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज सुंदरता में ही नहीं कला में भी माला

0: तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
1: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
0: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
1: महाराज कठिनाई तो ये है कि बादलों

0: की चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
1: उपाय? उपाय? हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
0: हम उसे मालामाल कर देंगे।

0: ये वसंत के फूलों का श्रृंगार क्या है?
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा

0: और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ मान तो ली थी, परंतु
1: कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ।
1: उधर देखिए महाराज, उधर।

0: झूलना चाहती हैं और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ मान तो ली थी परंतु
2: कैसी अचरज की बात है कि
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या क्या मालिका आ रही है
0: और क्या।

सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं। लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने

0: मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायिका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा

0: ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे, तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी, ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढें।
0: अरे, मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्यपुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है
4: देवी,

0: कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ,
1: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
0: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
1: सच? पर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावली का वाह! मित्र, बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके

0: लड़की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई,
1: बिल्कुल
0: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
1: हाँ
0: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि
1: जी,
0: दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
0: नहीं
1: थी कि
0: नहीं
1: चुनरिया पर ही आपको
0: नहीं
1: गीत
0: नहीं
1: लिखा।
0: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चाहिए। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है, तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली, और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का
0: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लकी ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को वो जगह ही रहता था,
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज़ आई कि कंप्लीट हो गए गाने, कि हाँ ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगली नी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं। हाँ? इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास, बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंद्र जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: अरे
0: देखिए
1: वाह अरे
0: रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते।
1: जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।

0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: मैं बेचैन हो गया, हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा? जॉन सर बोले नहीं, ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था कि चलो मैं ऐसे कर लूँगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा धरती की हलचल
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गज़ल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और मेरे
1: गया।
0: लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते और कहीं
0: जी
1: हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था एक सफल अनुभव ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे ज़िंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बम्बई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि

0: उनकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूँगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है,
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे। जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि
1: हाँ
0: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल।
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल
0: के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब।
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई, ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं, और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मज़ा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: ये
1: मैं
0: तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट
1: हाँ,
0: कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफ़ी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊँगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब वो
0: सोनू निगम
1: गाना
0: जी के पिताजी।
1: जी वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फ़ोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मज़ा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई, और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज़ में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी
1: नहीं
0: बात
1: है।
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं नहीं
0: आपने,
1: नहीं
0: और
1: नहीं
0: आपसे
1: नहीं
0: कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज़ पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों
1: नहीं
0: को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
0: हाँ
1: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो। तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
0: हाँ
1: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने
0: अच्छा
1: फ़ायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
0: हाँ
1: तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुँह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज़ नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: लिखवा देते।
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है ये एक्टर
1: हाँ जो
0: है
1: भी सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
0: हर रिकॉर्डिंग में आप
1: हर
0: रहते
1: रिकॉर्डिंग में
0: हैं।
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
0: नहीं।
1: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5,000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी,
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर

0: क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
1: जी
0: है, लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब

0: काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
1: जी
0: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूज़िक कंपनी है ओडली के नाम से,
1: उड़ली।
0: ओडली
1: अच्छा, यहाँ पर भी
0: म्यूज़िक,
1: चुनरी आई।
0: चुनरिया अंडरस्टूड है।
1: हाँ जी।
0: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने अमित कुमार।
1: अरे वाह।
0: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते

0: सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
1: अच्छा
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए, और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी हैं ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ, मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी, मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है
1: जी
0: वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
1: हाँ
0: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मज़ा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को
1: बात
0: यकीन
1: है,
0: नहीं हुआ
1: बात
0: कि
1: करो,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
1: एक
0: 1 रुपया
1: रुपया
0: नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह, अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बात,
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता, कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ हाँ सही
0: लेकिन मेरी
1: बात है।
0: औकात ही क्या है, मैं
1: हाँ,
0: क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं,
1: की।
0: और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी,
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ,
1: बहुत
0: और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ
1: सैल्यूट है
0: कि
1: उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना, लेकिन
1: जी,
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला।
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं
0: हाँ
1: भावुक हो गई हूँ।
0: नहीं
1: एक
0: नहीं
1: गाना पहले सुन लेते
0: एक गाना हम लोग सुनते
1: हैं।
0: हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड हैं भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट AI जो है ना, आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने

0: ने वो बात भी कही जो आज के फूहड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा,
1: बहुत प्यारे
0: लेकिन
1: तरीके से,
0: बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज
1: क्लासिकली
0: से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया.
0: वहाँ वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल.
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल.
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया.
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो.
0: 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस.
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ
1: अच्छा.
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूँ तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, वो चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी।
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और
1: जी
0: विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक
1: जी
0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध
0: धन्यवाद
1: भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी
1: हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

श्रोताओं, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालूतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित बरेली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे रिले किया जाएगा। शाम 5:35 पर सुनिएगा यू मंच कार्यक्रम।

शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने ने पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा किसान वाणी। शाम 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत। रौनका गराई दिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:25 पर। ४५ पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। रात्रि 8 बजे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रंगे गजल। ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें का। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित बरेली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ भाग 8।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी। और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
2: तो देवेंद्र जी, आप बड़े ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया, जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहाँ से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
2: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
3: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
2: अच्छा।
3: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री जाल लगाया।
2: अच्छा।
3: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में। और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
2: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड, कहाँ पर है?
3: सोनीपत में है।
2: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
3: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं। लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
2: अब ये तो बात हुई लोगों

0: सहयोग की। लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
1: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
0: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
1: मैं कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
0: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
1: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता है परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है, एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना, और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
0: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
1: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है, ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
0: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
1: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी

0: है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, अब हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी, माताएं, बहनें, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है, हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में, जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे, एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं, पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता देता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर है।

0: कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण की गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते हैं।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवमंच।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने

0: लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
6: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
5: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
7: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
8: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
7: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
8: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
7: वो कैसे?
8: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
7: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
8: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
7: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
8: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
7: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
8: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: युवा साथियों नमस्कार, आज के युव मंच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं प्रकाशा, और आज की कुछ जानकारियां और साथ ही मनोरंजन के साथ हम बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की, यानी आज जो कि अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनकी जयंती है आज, और उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो चलिए बात उनके बारे में करते हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। जी हाँ, 4 जुलाई 1897 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के भीमावरम में एक तेलुगु परिवार में जन्मे वे 1882 के मद्रास वन अधिनियम के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में शामिल हुए, और जिसने प्रभावी रूप से लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया। तो एक ऐसे आंदोलन में उन्होंने वो हिस्सा बने उनका, और उस आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की। जी, और देखिए उनके बारे में और बात की जाए तो साल 1897 में आज ही के दिन यानी 4 जुलाई को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू जी की जयंती है। उनका जन्म विशाखापत्तनम के एक गांव में हुआ था, और देखिए उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और देश भर में उन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जनजातियों को एकजुट किया था, और सीताराम राजू की अगुवाई में रंपा विद्रोह हुआ था, जिसके बारे में जो है जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले उनके जीवन के बारे में बात करें। 18 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने तपस्या की, उनको ज्योतिष और चिकित्सा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और क्योंकि राजू जो थे वो जंगली जानवरों को वश में करने की उनकी क्षमता थी, इसकी वजह से वो आदिवासी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अंग्रेजों ने मद्रास वन अधिनियम लागू किया था, और इस अधिनियम की वजह से आदिवासियों के जंगल में घूमने और उनकी पारंपरिक खेती को जो है वो बैन कर दिया गया था उस समय, और आदिवासी समाज सालों से इसका विद्रोह कर रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और अल्लूरी सीताराम राजू भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। जी, और देखिए उनके बारे में और जानकारी आपके साथ साझा करें तो इस विद्रोह की बात करते हैं जिसका वो हिस्सा बने। साल 1922 में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था रंपा विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था, और साल 1922 में अल्लूरी सीताराम की अगुवाई में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। इसको रंपा विद्रोह नाम दिया गया। अल्लूरी की अगुवाई में गुरिल्ला युद्ध 700 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गया, और आदिवासियों ने पुलिस थाने को भी निशाना बनाया। थानों पर गोरिल्ला हमले होते थे, शस्त्रागार जो थे वो लूटे जाते थे। अंग्रेजों ने अल्लूरी सीता राम को पकड़ने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था जी। उन्होंने जो है दो साल के भीतर उन्हें पकड़ने के लिए 40 लाख रुपए जो थे वो खर्च किए थे जी। तो ये है उनके बारे में कि उन्होंने किस तरह से आदिवासियों के लिए विद्रोह में उन्होंने भूमिका निभाई अपनी, और किस तरह से उस विद्रोह में वो डटे रहे। राम राजू ने तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्वी घाट क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को खदेड़ने का प्रयास किया। विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी सेना के लिए हथियार हासिल करने के लिए शाही पुलिस के कई पुलिस थानों पर छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां से बहुत सारे हथियारों को लूटा उन्होंने। प्रत्येक छापे के बाद वे थाने में अपना हस्ताक्षर किया हुआ एक लिखित नोट छोड़ते थे, जिसमें पुलिस को लूटी गई वस्तुओं का विवरण जो है वो होता था, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त हथियारों का विवरण भी शामिल होता था जी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने 2 साल तक उन्हें उनकी तलाश की, और उन्हें पकड़ने के लिए 40 लाख से भी अधिक उन्होंने खर्च किया था। अंततः 1924 में जो है उन्हें चिंतपल्ली के जंगलों में पकड़ा गया और एक पेड़ से उन्हें बांध दिया गया था जी। और उसके बाद उनकी हत्या उन्होंने कर दी थी अंग्रेजों ने उस समय। और देखिए बाद में कृष्णा देवी पेटा में उनके अंतिम अवशेषों के लिए एक समाधि का निर्माण किया गया था। और साथ ही अल्लूरी सीता रमा राजू जिला और विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र में अल्लूरी सीता राम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर जो है वो रखा गया है जी। तो देखिए ये थी उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया। और अब देखो किसी अपने देश के लिए या अपने संस्कृति को बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो उन्होंने वही किया उस समय, और अपने प्राणों तक को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था इस विद्रोह में। तो चलिए ये तो उनके जीवन के बारे में हमने जानकारी आपके साथ साझा की, क्योंकि आज है उनकी जयंती। तो अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
7: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
8: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
7: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
8: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
7: वो कैसे?
8: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
7: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
8: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
7: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
8: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
7: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
8: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
6: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
5: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
10: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
10: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: युवा मंच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। युवा साथियों, जिंदगी की तरह मौसम भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी धूप की तपिश है तो कभी बारिश की फुहार, तो कभी ठंडी हवाओं का एहसास। तो ऐसे में समझदारी इसी बात में है कि हम बदलते मौसम के साथ अपने रहन सहन को और अपने खान पान को जो है थोड़ा सा बदलें। ज़रूर जो भी ज़रूरी बदलाव हैं वो ज़रूर करें। अक्सर हम अपनी पढ़ाई, नौकरी या दोस्तों के बीच इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तभी हर मंजिल तक पहुंचने का जो हौसला है वो बना रहेगा। तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। इस मौसम में बाहर का जो भोजन है वो कम खाएं, ताज़े फल और हरी सब्जियों को अपनी थाली में जगह ज़रूर दें और पर्याप्त पानी ज़रूर पिएं जी। और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार अपनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। बोलते हैं ना कि मौसम बदलता है और बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ज़रूर हम अपनी सेहत को सही मायने में बरकरार रख पाएंगे। तो यही बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लगता है कि ये मौसम थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है तो इस मौसम में भी खुद का ख्याल रखिए, अपने खान पान का और अपने जो

हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसके लिए जो है ताज़ा भोजन खाएँ, जो स्वच्छ भोजन है वो हम खाएँ। और देखिए कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर ही आपके सपनों की सबसे बड़ी ताकत है, है ना। तो भरपूर पानी पिएं, संतुलित और पौष्टिक भोजन ज़रूर करें, और साथ ही नींद की जहाँ तक बात है पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जी, जब भी घर से बाहर आप निकलते हैं तो उस समय मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, देखिए बदलते मौसम में सिर्फ शरीर ही नहीं मन का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सकारात्मक सोच के साथ, मुस्कान और परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय और अपने पसंदीदा कामों के लिए जो है वो थोड़ा समय ज़रूर निकालें, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी मजबूत बना रहे। जी, तो मौसम के हर रंग का आनंद लें लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई समझौता बिल्कुल ना करें, क्योंकि युवा हमारे जो है वो स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ समाज हमारा बनेगा और उज्ज्वल भविष्य बनेगा। तो यही तो हम चाहते हैं ना कि हमारे युवा साथी जो है हमेशा अपने भविष्य की तरफ पूरा ध्यान दें। तो ज़रूरी है अगर हमारा मन, हमारा तन स्वस्थ होगा तो हमारे देश का भविष्य जो है वो भी उज्ज्वल होगा। इससे हमें ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, अब ये तो हुई मौसम की बात कि बदलते हुए मौसम के साथ हमें खुद को भी थोड़ा सा समय अनुसार या मौसम के अनुसार जो है ढाल लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। तो देखिए, अब बात मौसम की कर रहे हैं लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा बदलाव हमारे अंदर भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें करना चाहिए। जब भी हमें लगता है कि कोई काम जिसे हम एक ही तरीके से करते आ रहे हैं तो उसे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, थोड़ा सा उस काम को करने का तरीका हम बदलें तो हो सकता है उससे और भी बेहतर परिणाम हमारे सामने आए, है ना। क्योंकि बदलाव में जो है वो हमें लगता है ना कि ये अगर हम बदलाव करेंगे तो शायद ये कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा अक्सर जो है वो देखा जाता है कि जब भी हम अपने काम के तरीके बदलते हैं तो वो काम और भी बेहतर होता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर से आप पुरानी तकनीक पे चलिए, मतलब कि अपने पुराने तरीके से ही उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल जी, आपकी जो मंजिल है उसके रास्ते में अगर कोई आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कोई रुकावट है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आप अपने मन में बदलाव कर सकते हैं उस काम को लेकर के। क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो पूरा होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हमने जो है मेहनत जिस दिशा में हम कर रहे हैं उस दिशा में हम अच्छे से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करें। तो अब इसके साथ ही कार्यक्रम में एक और गीत आई, यहाँ पर सुन लेते हैं।

जी जॉली LLB 2 फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जमीन नौटियाल की आवाज़ में था। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम युवमंच अब यहीं पर संपन्न होता है। युवा साथियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:68 और 30 सेकंड हुए हैं, माफ कीजिएगा 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि 2027 में भाजपा की सीटें मौजूदा संख्या से कम होंगी। दिल्ली से शिमला लौटने पर आज उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में मिशन रिपीट नहीं होता, बल्कि जनता के निर्णय से सरकार बनती है। उन्होंने शिमला में हो रही कांग्रेस कमेटी की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की है।
3: नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण, वो सब शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगे और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है और उसे भरना जरूरी है, हालांकि इस पर फैसला पार्टी हाईकमान करेगा।
3: मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है ये तो हाई कमांड तय करता है, और एक मंत्रिमंडल का हमारा पद खाली है, उस पद को भरना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 16-17 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी बैठक है। मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट खाली है उसको भरा जाए।
2: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पर अपने संबोधन में कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें सरकारी कानूनों में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल की सफलता को केवल कानून बनने से नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विधायी काम करने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़कों नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में करीब 227 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सोलन जिला में 15 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खस्ता हालत सोलन सुबाथू सड़क मार्ग की मुरम्मत के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार है और जल्द ही इसकी पहली किश्त जारी होगी।
4: सोलन सबाटू बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सबाटू से लेकर आगे पूरा परवानू तक ये सड़क जोड़ती है, करीबन 65 किलोमीटर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की DPR जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है कि 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, शांडल साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे।
2: राज्य वन विभाग ने इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में 8000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने सभी वन मंडल अधिकारियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। कई स्थानों पर जहां भूस्खलन से प्रदेश की कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, वहीं वर्षा से 23 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य बारिश होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मॉनसून के दौरान होने वाले नुकसान से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन व सड़क बाधित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी तैनात की जाएगी ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शाम ढले जब सुरों की महफिल सजती है तो थकान मुस्कुराहट में बदल जाती है। हर गीत दिल की जुबान बन जाता है और हर धुन एक खूबसूरत याद छोड़ जाती है। जी हाँ बिल्कुल, और यादों और एहसासों से सजे हुए इसी संगीत में सफर की आइए शुरुआत करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। जी, वादों की खुशबू, विश्वास की रोशनी, दो दिलों की धड़कनों में बस एक ही कहानी, साथ निभाने का है खूबसूरत इरादा, हर पल प्यार से सजा रहे ये सफर हमारा। जी हाँ, और ऐसे ही अटूट विश्वास, खूबसूरत एहसास और सच्चे प्रेम की कहानी बयां करता कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: सफर सुहाने, गाने नए पुराने, कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। पुराने गीतों की मिठास, नए गीतों की ताजगी और सुरों का ऐसा खूबसूरत संगम जो आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देगा। चाहे आप घर पे हों, सफर में हों, या फिर अपनों के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हों, बिल्कुल जी जुड़े रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ और आनंद लीजिए इस अनोखे सफर का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, बॉबी जासूस की फिल्म से।

श्रेया घोषाल और पापोन की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना बॉबी जासूस फिल्म से, इसे हमने लिया था। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, पड़ोसन फिल्म से था। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: रमा, ओ रमा, ओ सुनी ले, और रमा सुनी ले, इन्हें रखी दे कुदालूंगा कने चली पकड़ जो।
2: ओ राजोताई, चली पौना आड़े हो।
1: चली पो नींदी ते खेतर।
2: नींदी ते कने उनमी मच्छर भी बड़ भारी खा दा ही या।
1: मच्छर खा दा कने बरखा भी काली सीन सीन दे, इसे लगी पौधी भी पे बरसात दे इसे लगी पी भी।
2: आहो पर दिख का ही बड़ा भारी जम्मू आता इन्हें खेतों बिच करना भी क्या।
1: चल इन दाई करती ना, दिख ये खरा छलियां जो ते देतिया भी है, गरूर देतिया भी है।
2: हाँ।
1: इस ते छलियां खरियां हो जांदियां कने का भी थोड़ा रुकी आंदा भी है।
2: आ ओ सह ता गल ठीक ला दे आ ना, इन्ना भी अगर टाइम रे सिरे दे अगर काम हो या ना, सह बरखा उतरी गईयां हुन का भी दिख कन्ने कन्ने जमी गई है छलियां च।
1: चल कोई नहीं, दाई करी देने ते थोड़ा फर्क पई आना भी आ।
2: आहो
1: पर चली पो चलदियां चलदियां गलांदियां ही।
2: आहो दिन प्रतिदिन ना मौसम दी गल करिए ता तिस बिच भी बड़ा भारी बदलाव हो ये या। दिख अज ज्यादा ते ज्यादा रहा तापमान 30°C कने घट ते घट रहा 26°C कने प्यागा भी दिख छुट मुट बरखा जी सही इन्ना लगी रही कने दिने भी इन्ना बदल जहा था बड़ा भारी होया पर पता नहीं कुछ कनारे जी ऐसा भरी ने चली गया होना ये या।
1: चल हम बरसात का टाइम ऐसे टिले टिले तो भरना ही है, कई कई बार वार पार भरी आता तो इतनी नहीं भरता। चल हूँ बरसात लगूगी पाए कने बरसात के काम कार भी किसान के बधी आते भी है।
2: बधी तो जाते पर मी राजो ताई पे पसीने ना ना ता तर तर हो या दे बड़ा ही बुरा हाल है गर्मियां कन्ने।
1: तो दिख गर्मी तो हूँ बढ़नी है ताई छली दे अस झट उपरा कौना भी है इहो सने छली दे इस चढ़ती भी।
2: हाँ ये तो गल ठीक ला दी आनी कने अजीब जी ता पाई ये बरसाती दी गर्मी ना ये बरखा हो या दी तो थोड़ी चलोई तो जा।
1: पर मैं एक गल और पूछनी, पिछे दी है तेरे दे खेतर खाली है ना, मुझे बड़े दिन बाद मिली रमा याद ही नहीं रहने पूछने तो बोले ही भाई मैं मिट्टिया की जांच करवानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना ता करी ले ऐसा काम बनाई लिया।
2: और नहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो मैं बनाई लिया हा क्योंकि ये दिखा ना ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिया सह भारत सरकार द्वारा जिया सह किसान ताई शुरू की एक कृषि योजना ही।
1: अच्छा
2: हाँ इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है आ कि किसान जो तिना दे खेतां दी हजे मिट्टी तिहा दी गुणवत्ता पोषक तत्वों की स्थिति के बारे च तिना जो जानकारी मिलती रहे सोगी सोगी सहजे उपयुक्त तो उर्वरक होंगे तिना का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती भाई ये उर्वरक जे सहांदे खेतां च घाटे
1: अच्छा
2: मिट्टी च मिलाई सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा किन्ने दिख एक गल मैं भी गलानी मिट्टिया की जांच दे ना यह योजना के तहत किसान जो हर 2 साल के अंतराल भी मिट्टिया जिहड़ा कार्ड बनू होंदा से प्रदान कीता जांदा भी
2: आ। हाँ कने इस बिच जे असे 12 पैरामीटर होंदे ते इस बिच कार्ड विच मिट्टी दे सेहत ते जुड़े होंदे ना तिना विच नाइट्रोजन एन लिखुआ होंदा या फास्फोरस पी लिखुआ होंदा पोटास विच जे असे के लिखुआ होंदा कने जिंक जे ई ते इस च जेड एन लिखुआ होंदा आयरन च एफ ई लिखुआ होंदा कॉपर च सी यू लिखुआ होंदा कने पीएच स्तर आदि जे असे इस च पूरी विस्तृत जानकारी जे इसे इना 12 पैरामीटर बिच जस्ती होंगी है।
1: अच्छा किन्ने फायदे की गल करूँ ना तो किसानों जो इं पता लगता भी मिट्टी च केड़े केड़े पोषक तत्वों की कमी या बेहतर बनाने कि पैदावार दे से कितनी मात्रा च खाद पानी उर्वरक दे असर पाने भी है। तो यह योजना बिच मतलब दिया दे बोलना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर दे असर किसानों जो बनाना चाहता भी है।
2: बिल्कुल
1: कने मिट्टिया की जांच दे इस दिया दे रुखा हेठ मिट्टी होंगी तिथि ते दे असर मिट्टी अह जो लैना चाहती
2: कने ये भी ध्यान रखना ही है तालू जे अह जो हिदायत दी जाती है ना पे इस टाइम पर जे अस अह अपने जे स्वास्थ्य कार्ड या मृदा का परीक्षण कराई लिया या फिर अह मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने हैं तो उस टाइम पर अह जो तुरंत जे अस बनाई लेना चाहिए कने मिट्टी की जांच जी से जरूर करवाई लेनी चाहिए क्योंकि ये एक प्रमाण पत्र के जरिए जे अस दिते जाता ही है कि किसानों जो तिना की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे च सटीक जानकारी मिलती रहती है। तिना जे दिखा खूना की जांच कराई करने हाँ जो पता लगता ही है कि हाँ शरीर च क्या कमी या फिर हाँ शरीर च कौन जी बीमारी तैयार होवा दी है ना तिना ही मिट्टी के बारे च भी जे अस ताही पता लगता अगर हाँ मिट्टी की जांच करवाएंगे अगर मिट्टी की जांच करा तो पोषक तत्वों ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹਾਂ ਜੇ ਆਸ ਹੈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਜੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।
1: ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਂਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲਈ ਕਿ ਲੈ ਚੁਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੇਟੇ ਚਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਲਦੀਆਂ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੰਦਰ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਖੀਆਂ ਮੱਖ ਲੱਗਦੇ ਸਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚਲੀ ਪਾ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਗਲਾਂਗੀਆਂ ਗੋਡਾ।
2: ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪਾਈ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਾਖੇ ਜਿਹੀ ਸਾ ਲੱਗਾ ਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਤਾਈ ਹਾਥੀ ਘਾਤ ਬੜ ਬੜ ਬੜ ਬੜਾ ਕੋਥੂ ਆ ਹਾਏ ਨਾ
1: ਇਹ ਬਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਤਾ ਤਾਤਾ ਡਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਚੁਕਵਾਈ ਦੇ ਹੋਣਾ।
2: ਹਾਂ ਲਿਆ ਚੱਕਾ ਚੱਕਾ ਚਲਾ ਚਲਾ ਉਹ

0: राजू ताई घर तक इया पहुंची ना, पर ए दिखाई हूं भई ए डानिया बेली दा फूल बड़ा भारी पे है, ये लगू इया भी हैन कि नहीं लगी इया?
1: दिखो वे लो दिखो लगू दी नहीं हैन?
0: आओ मैं ये बड़ी लगू इया ना, कद्दू ही बेली भी सुज्जा इया मिंजो, खीरे दी भी वो हो, खीरे दी बेल भी चलू ही है
1: टाइम मैं लगाओ इया कने रोज गुड आंदी है ना, तालिक बाल्टी पाए जरूर पानी देनी ताई फूल पौंदा कने मेहनत दिखतान।
0: हाँ ये तो गल ठीक ला दी है, मेहनत तो करने ही सारिया चीजा जो से मिलती है भाई।
1: लेकिन एक गल ना इतने गोहा दे है ना, से कैंचुआ खाद पाओ भी तो दिख गोहे ने तो चीज और शैल बांकी होंगी भी।
0: आहो घरा दी खाद थी ना तो तिस्ते जे असें थों जो फायदा मिली है ये आ, कने दूरों भी जाना नहीं पवा दे पानी पूनी देने तौंदी आ, तो नेड़े नेड़े तुहे बाल्टी एक पानी दी रोज पाइप दिंदे हे। हाँ कने ताइयां तो दिख भला ट्रैप भी लगा हुआ ये माखियां ताई है
1: तो इं ना क्या पहले पहले क्या हुआ तीन सारे फल लगो ना से बारह तो छैल हुआ कहने छेद पाए दो से माखी फिर पाई लगाना पे है भैया।
0: तद खरा कि ये है इसते क्या हुआ नुकसान थोड़ी नहीं है फायदा ही है ना, हूं माखी है तो इस बिच कठिया ओदिया।
1: हाँ तो दिख भाई लगूंगी ना कहने ताले ज्यादा लगी ताले तीजो भी देंगी दिख कद्दूए का खीरे की गल करे दिख कुराकड़िया फिर दिख करेले करेले हाथ नजर मारी नहीं।
0: आओ मैं करेले भी दिख बैंगन कितने भारी लग हुए ताई तीजो ता है।
1: हाँ ता
0: फसल तो खरी बा हुई बेई बेचने भी रखने भी के या नहीं
1: दिख ज्यादा होंगे ना तो बेचने ता आई है बोलता कोई ना कोई मुनाफा तो होना ही चाहता भी।
0: बिल्कुल ठीक गलाया कने इन्ना भी सब्जी मंडिया दे भा रेटा का भी पता होना चाहता ताई।
1: अच्छा तो मुझे लगता तू आज बाजारा गो दी ही?
0: बाजारो मैं तो नहीं गो दी ही पर मुन्नू जाता रहा ना बाजारा जो
1: अच्छा
0: तो है ले आंदा ही है भाई अज अज क्या क्या रेट सब्जियां दे भा रहे ना, तो तिस्त बिच जे असें मुझे दसा दा भी सब्जियां च आलू रहा अज 10 से 12 रुपये किलो, आलू पहाड़ी रहा 16 से 20 रुपये किलो, प्याज रहा 28 से 30 रुपये किलो, गोभी 60 से 65 रुपये किलो, बंद गोभी रही 28 से 30 रुपये किलो, शिमला मिर्च रही 50 से 60 रुपये, घिया 15 से 22 रुपये, लौकी 20 से 22 रुपये, भिंडी 20 से 25 रुपये किलो, करेला 20 से 30 रुपये किलो, पालक 40 से 45 रुपये, कने धनिया रहा 150 से 200 रुपया, टमाटर रहे 25 से 45 रुपये किलो, राम तोरी रही 25 से 30 रुपये किलो, गाजर 40 रुपये किलो, हरी मिर्च 40 से 45 रुपये किलो, नींबू 70 से 80 रुपये किलो, कने खीरा रहा 18 से 25 रुपये किलो, बैंगन रहे 25 से 30 रुपये किलो, अदरक 230 से 250 रुपये किलो, लहसुन 170 से 200 रुपया, मटर 100 से 120 रुपये किलो, फ्रासबीन 50 से 60 रुपये, कद्दू 18 से 22 रुपये किलो, अरबी 28 से 30 रुपये किलो, कने चुकंदर रहा 40 रुपये किलो। कने दिखनो भला फलां दी तुहे पढ़ा भला फलां दी क्या क्या भा रे,
1: तो केला प्रति डब्बा रहा 550 से 600 रुपये, सेब रे प्रति किलो 185 से 200 रुपये, अनार 160 से 200 रुपये, मौसमी रही 100 रुपये, पपीता रहा 58 से 60 रुपये, कने कीवी प्रति डब्बा रहा 1000, अनानास रे 45 से 50 रुपये, अमरूद रे 95 से 100 रुपये,
0: अच्छा।
1: माल्टा रे 160 से 180, कने डव नारियल रे 70 रुपये, अंब सफेदा रे 90 से 100 रुपये, अंब तोता रे 50 से 60 रुपये, अंब दशहरी रे 50 से 60 रुपये, कने पलब रे 70 से 80 रुपये, लीची रे 130 से 150 रुपये। तो भाई ए तो थे फलां दे थोक भाव रमा, दिख पता होना चाहिदा भी है ना।
0: आहो
1: तीन तुहे बोले भी बैंगन लगवे भी ये ताई दी क्यारिया विच बूटियां जो तो देखभाल करना पौंदी ने, तो कई बार कीट रोग भी लगे आंदे भी है, दिख काम भी करी लिया मैं गलांदियां दिख गोहा भी सट्टी आए ना नेड़े लाओ भी मालस कने गाह भी बन्ने ते अंदर कने के बोलते गाय दा हुन बस तमें पहले ही गोवी ही ना घा पानी भी पाई ते कुतरे ने ए प्यागा कुतरना हुन ठीक है ता फिर चली पौंदी
0: आहो चली पौना ताई चली पौना चल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन। सबसे पहले सुनते हैं जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी की आवाजों में एक गीत। फिल्म का नाम है गीत गाता चल। गीतकार व संगीतकार रविंद्र जैन।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: भक्ति संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से जी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना, आरजू फिल्म से माता की एक भेंट।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म से ये भक्ति गीत, आवाज आश्रम भोसले की है।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ 101.8 MHz पर और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका गराइंदियां।

0: लोकगीत ते बाद जैसा एक बारी फिर ते स्वागत कर दे अपने सारे ही श्रोताओं दा। कने अहां लोकगीत ते पहले गलबात कर दे ही कि इन्हां छुट्टियां बिच जैसे अहां अपने बच्चें दी देखभाल जैसा किन्ना करनी है, कने ये भी ध्यान रखना ही है राजू बब्बू भाई अहां दे बच्चे जी अन से पढ़ाइया बिच जैसे कुसी सब्जेक्ट च या कुसी विषय बिच जैसे थोड़े पिछड़ी गए हैं, तो इस टाइम जे अस अहाँ बच्चों का थोड़ा तिना जो टाइम दे करने जे अस तिना दी तिस सब्जेक्टा च या तिस विषय बिच जे अस रुचि बनाई सकते हैं, क्योंकि इन्हां छुट्टियां का अहाँ फायदा जे अस ले सकते हैं, क्योंकि अगर अहाँ फायदा लेंगे तो अहाँ के बच्चे जे अन सह उन्होंने बच्चों सौगी बराबर जे अस चली पाते हैं। इस सौगी ही अहाँ जे अस अपने बच्चों जो घुमाना फिराना भी है, पर यह जरूर दसना ही है कि अहाँ जो प्रकृति की जे अस क्या क्या चीज़ा मिलनी हैं, कनेक्टियाना का सोगी दोहन करने सोगी सोगी जैसा तीना जो बचाना भी कितना जरूरी है।
1: सही बोलिया भी है, पढ़ाई कन्ने कन्ने और कई काम कर रहे थे, कई बार बच्चा पेंटिंग रुचि रखता, कई बार कोई और चीज खेलना चाहता भी है, या कई और संगीत हो या कई बार हारमोनियम बजाने से शौक रखता भी, सारे बच्चे के शौक होंगे से जरूर पूरे करना चाहते, कई बार तिना ची बच्चा दे अगे निकल आता भी है।
0: बिल्कुल
1: सारे पहल तो घर से ही शुरू करता भी है, फिर सबसे बड़ी गुरु दे माँ होंगी कि फिर स्कूल च जाने इसके जेडे शिक्षक होंगे स एक गुरु दे मनते भी है। अच्छा छुट्टियां गल्ला परिवार च सीखता भी है, परिवार च चलना परिवार च सदस्यों च बोलना सीखता, उठना बैठना सीखता भी है, तीन एक अच्छा मतलब परिवरिश होगी तो भी एक अच्छे मतलब सदस्य बनने की कोशिश दे ऐसा बच्चा भी करता ही है।
0: बिल्कुल एक अच्छा नागरिक ता ही अह बनी सकते हैं अगर अहाँ की परवरिश अच्छी होगी, अच्छे संस्कार अहाँ जो मिल हुए होंगे या अच्छे संस्कार अहाँ अपने बच्चों जो दिते होंगे, तो अहाँ एक सफल नागरिक के तौर पर जे अस अपने बच्चे जो दिखी सकते हैं कि अहाँ जे अस इस दी परवरिश बड़ी ही अच्छे तरीके ने की है, कने कोशिश भी करते हैं कि अहाँ माता पिता कि अहाँ दे बच्चे जो जे अस अहाँ अच्छे संस्कार देन, ताकि तीस जो समाज बिच जैसे किसी भी तरह का कोई भी एड़ा विपदा नहीं आवे, किसी तरह की कोई भी एड़ी समस्या नहीं आवे, ताकि तीस जो पीछे हटना पवे।
1: रमा मैं एक गल होर गलानी मेरे दिमाग च आ रही, बच्चे दे ज्यादा करने अस गल डिजिटल जमाना सारे मोल मोबाइल है, मोबाइल बिच ज्यादा व्यस्त दे से रहंदे भी, तो बच्चों का एक एड़ा टाइम टेबल बनाना भी है कि तीस व्यस्त बिच बच्चे दे से मोबाइल ज्यादा नहीं दिखन। दिखा एक ही तरह से अच्छे फायदे भी है, पर एक ही तरह से तक बोले हर चीज़ बिच दो पहल होंगे, नुकसान भी होंगे कन अच्छे भी होंगे भी है, पर जो कि बच्चे ताली गेमा खेलते भी है या कोई कम चु गलाइए तो कई बार बच्चे के अनसुनी कर देंगे भी है।
0: जी जी
1: तो इस बिच मतलब तेना बच्चों जो ये भी सिखाना कि टाइम आ टाइम आई समय समय के अनुसार दे अस अपना मतलब एक समय सारनी बनाई इस कम जो करन, कने जेड़ा फोन है इससे दूरी बनाई रखन, फोन भी जरूरी है, मतलब अजकल तो डिजिटल का जमाना तो सारे ही फोन पर व्यस्त दे हैं, पर फोन एक आने की जरूरत ही यह नहीं है भी बिल्कुल ही जो एक अपना मतलब सदस्य या एक अपना मतलब समय के अनुसार इस पर व्यस्त रहना भी है।
0: जी या मतलब गलाने का मतलब यही है कि अहाँ जो अस हर चीज़ से जो अस अपने बच्चे जो जो अस समझाने की कोशिश करनी है कि इन ब्लू स्क्रीन से भी जो अस बच्चे जो दूर रखना ही है, कने प्रकृति का भी आनंद से जरूर लैन, इस होगी अपन पढ़ाइया कने अपने हुनर जो अपन सजे एक परंपराई संस्कृति तिना दे नैतिक मूल्य तिना जो भी समझने की अगर बच्चा कोशिश करगा तो काफ़ी अहाँ जो अस अपने परवरिश करने जो अस अपने आप जो जो अस समझी सकते कि अहाँ समर्थन। तो दिखा पे कार्यक्रम च गल्लां बातां च अन से तुम सौगी अहाँ कितनी यानी कि आने आने दिन च जैसे जो छुट्टियां बच्चों जो पवा तो किस तरीके कन्ने बच्चे की देख रेख करनी है, किस तरीके कन्ने जैसे बच्चों का लालन पालन जैसे करना ही है, तो इन्हें ही गल्लां बातां सौगी अज कार्यक्रम रौनक गराइंदियां का भी समय इतनी लगे समाप्त होना।
1: हूँ सारे ही सुनने वाले लेंदे अनुमति बोल रहे हैं
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रोण कांगर आई दिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:43 और 15 सेकंड हुए हैं अब से थोड़ी ही देर में, यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथू सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार होगी राज्य कार्य योजना, सर्पदंश योजना नोटिफाइएबल रोग। और सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र की गेहल पंचायत के लोगों ने बिजली समस्या के समाधान की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित संगठन की आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर मंच पर प्रदेश के जायज अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है, जिससे प्रदेश की आय के संसाधनों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और भाजपा की सीटें मौजूदा संख्या से कम होंगी। उन्होंने संगठन की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की है।
3: प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण, वो सब शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगी और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी।
2: इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की बैठकें नियमित रूप से सक्रियता से आयोजित की जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए वित्तीय मामलों में भेदभाव करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को हिमाचल को देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती राज्य बनाने की दिशा में पूर्ण दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग को

0: सीधा संवाद किया। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का अवलोकन भी करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारी व सरकार सीधे विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर सकेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में करीब 227 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सोलन जिला में 15 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल सोलन सुबाथु सड़क मार्ग की मुरम्मत के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार है और जल्द ही इसकी पहली किश्त जारी होगी।
1: सोलन सबाठू बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सबाठू से लेकर आगे पूरा परवानों तक ये सड़क जोड़ती है, करीबन 65 किलोमीटर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की DPR जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है कि 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, चंडल साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पर अपने संबोधन में कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें सरकारी कानूनों में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल की सफलता को केवल कानून बनने से नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विधायी काम करने का आग्रह किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के लिए व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेशनल हेल्थ मिशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची के डॉक्टर जयदीप सी मेनन ने बताया कि जीरो स्नेक बाइट डेथ परियोजना देश के 7 राज्यों में संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में इसकी शुरुआत कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी और नूरपुर ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है।
2: अभी हिमाचल में 2 ब्लॉक लिए हैं, एक तो ज्वालामुखी, दूसरी नूरपुर। सो ये प्राइमरली कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाना है और ये जो ज्यादातर लोग जाते हैं झाड़ू फूंक और दूसरी जो इलाज के लिए जाते हैं वो बंद करना चाहिए। इसके इलाज एक ही इलाज है, एंटी स्नेक वेनम। अगर सांप काटा हो, जहरीला हो, हिमाचल की हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इस भी अवेलेबल है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्पदंश कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि हिमाचल में स्नेक बाइट को अब नोटिफाइएबल रोग घोषित किया गया है और सर्पदंश के हर मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा।
3: स्नेक बाइट जो है अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी और बाकी की स्टेट्स ने भी इसको नोटिफाइबल कर दिया, यानी पहले स्नेक बाइट होता था तो कोई बताता नहीं था, अब कोई भी स्नेक बाइट होगा उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कानून के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है।
0: राज्य सरकार लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के बेली गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक अनुराधा राणा को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बदहाल सड़कें और खराब मोबाइल नेटवर्क भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ग्रामीणों ने टूटे पुल की उच्च स्तरीय जांच और सड़कों की मरम्मत व मोबाइल नेटवर्क की समस्या का समाधान 15 दिन में करने की मांग की है। उधर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की गहल पंचायत में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बार बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से गहल गांव में कई बार 1 सप्ताह तक बिजली नहीं होती। उन्होंने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 23 KV करने और इसे सड़क के किनारे स्थापित करने की बिजली बोर्ड से मांग की है।
4: पिछले 5 दिन से पूरा गांव अंधेरे में था और हमने बिजली विभाग से रिक्वेस्ट की जल्दी से जल्दी गहल गांव के लिए ट्रांसफार्मर भेजा जाए और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर भी जरूर भेजा है। हमारे को दिक्कत

0: ये आती है, पिछले 40-50 वर्षों से जब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर स्थापित हुआ है, लोगों को उठाकर लगभग 500 से 700 मीटर नीचे खाई में ले जाना पड़ता है। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो गहल गांव का जो ट्रांसफार्मर है वो सड़क के लिए शिफ्ट किया जाए।
1: राज्य वन विभाग ने इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में 8000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने सभी वन मंडल अधिकारियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने वित्त विभाग द्वारा पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने का सख्त विरोध किया है। शिमला से जारी एक बयान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि इस अधिसूचना से हजारों पेंशनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथु सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ की DPR तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार होगी राज्य कार्य योजना। सर्पदंश योजना नोटिफाइएबल रोग घोषित। और सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र की गेहल पंचायत के लोगों ने बिजली समस्या के समाधान की सरकार से की मांग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सावधानी की आदत डालिए, बारिश में खुद को सुरक्षित रखिए। मौसम बदले, आदत भी बदलें, सेहत की रक्षा हर पल कर लें। जहां न रुके गंदा पानी, वहीं रहेगी अच्छी जिंदगानी। बरसात में रखें स्वच्छता का ध्यान, तभी रहेगा स्वस्थ आपका परिवार। बारिश की फुहारें मन को भाएं, सावधानी से जीवन मुस्कुराए।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
2: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी का वाचन। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। वाचन स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
3: उन दिनों मिस जोशी बंबई सभ्य समाज की राधिका थी तो वो एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धनरानियों को भी लज्जित करता था। वो एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहां सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वो सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का कब्ज था तो वो मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वो मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम, सारी सरकारी चीजों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कलपुर्जे, इन सब के ठेके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वो अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती थी तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थीं। बड़े बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वो रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थीं। वो सुशिक्षिता थी, वाकपटु थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली छटा से, ताकती तो बांकी चितवन से, लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जोहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। वो थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भांति रहते थे, और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई दे जाती थी। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जोहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे।

0: मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी हरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारियों पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि ये कर लगा दिया जाता, अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। अरे हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली थी। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले हुए थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए जनता के बीच में निशंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिर रहे थे। मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्य अधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थीं और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जन समूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। अचानक सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बिठा दिया। आपटे की अवस्था 30-35 वर्ष की रही होगी। दुबले पतले आदमी थे, मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था, बाल भी पक चले थे, मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वो एक सफेद मोटा कुर्ता पहने हुए थे, न पाँव में जूते थे न सिर पर टोपी। इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वो क्षण मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद ना आती थी, रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। यह प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया, फिर देश की राजनैतिक स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी ना हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए हैं, शराबों की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरें और सेवक शराब उड़ाएं, मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयां चलें। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं, हमारा ही अपराध है। हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर में कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार सह नहीं सकते। यह हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें। यह असह्य है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजें, दावतें उड़ाएं, वेश्याओं पर कंचन की वर्षा करें। संसार में ऐसा और कौन देश होगा जहां प्रजा तो भूखों मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ाओं में मग्न हो, जहां स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए, यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसरों को इशारे से बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आप टेको ही पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए। कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा का व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया है जो हम समझते थे कि वो करेंगे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हम यहां बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी ने कहा, इससे क्या फायदा? क्यों, उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी? मिस्टर जौहरी के ये कहने पर मिस जोशी ने कहा, लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वो सारे संसार में फैलेगी और फिर हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। आप अखबारों के संवाददाताओं की जबान तो बंद नहीं कर सकते ना। इस पर मिस्टर जौहरी ने कहा, कुछ भी हो मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूं। अरे कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी, बदनामी से तो डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठ साबित कर सकते हैं, आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। नहीं, मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूं। आपटे को मेरे हाथ छोड़ दीजिए, मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्ध हस्त है उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूं जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस ना हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि ये कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। आपटे राजनीति में बड़ा चतुर है, मिस्टर जौहरी ने शंकित होकर कहा। तो मिस जोशी ने कहा, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पर युवती अपनी मोहनी न डाल सके। मिस्टर जौहरी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम ये काम कर पाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूं। तो हुक्म दे दीजिए कि वो इसी वक्त छोड़ दिया जाए। मिस जोशी ने कहा, जनता कहीं ये तो न समझेगी कि सरकार डर गई। मिस्टर जौहरी थोड़े से शंकित होकर कह रहे थे, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। मिस जोशी ने कहा, लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? मिस्टर जौहरी ने कहा, मैं नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानों कान खबर ना होगी। मुझे तो अब भी भय है कि वो तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में ना आएगा। लेकिन खैर, तुम्हारी इच्छा है तो आजमा देखो। ये कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममय नेत्रों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे, चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत सौम्य विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था।
1: सुनो कहानी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी में। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म दौड़ से। आवाज़ें रानू मुखर्जी, सोनू निगम और नीरज बोहरा की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से। आवाज़ें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sí.
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: थोड़ी ही देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: श्रोताओं, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
3: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक

0: पूरा हो गया।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है।

0: ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है.
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड. द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट. गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स, अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे.
3: आज दुनिया भर में भारत की कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है.
1: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. Here is a report from our correspondent in Jakarta.
5: During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President of Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora, underscoring the deep cultural and historical ties between the two nations. The Indian community in Indonesia is eagerly waiting for the visit. Speaking to Akashvani, Siddharth Taparia, President of the India Club of Jakarta, highlighted the strong friendship between India and Indonesia. He noted that this high-level engagement reflects the importance both countries place on each other. Mr. Taparia emphasized that India and Indonesia, as two of the fastest-growing economies with large populations, together create a vibrant marketplace. He expressed optimism that two nations will deepen collaboration in infrastructure, trade, defense, agriculture, natural resources, and other sectors. Shandeep Bambashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Following his visit to Indonesia, Mr. Modi will embark on the second leg of his visit to Australia from the 8th to the 10th of this month. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand on the 10th and 11th of July. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organized by a private media organization in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms.
6: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 crore पहुंच चुका है.
7: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 crore रुपीस. अंटिल 7, 8 or 9 years अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज एप्रोक्सीमेटली 46,000 crore रुपीस. डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो रीच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 38,000 crore रुपीस. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन 2013 एंड 14 इट वाज ओनली 686 crores व्हिच इज नाउ increased by 57 times today.
6: जो आज यह बढ़कर 57 times बढ़ चुका है.
1: Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight, but has been implemented through a measured step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla, said that ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
8: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
1: A Delhi court today rejected the bail pleas filed by Omar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots conspiracy case. Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of Karkarduma Court dismissed the bail pleas filed by both the accused persons. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a high-level review meeting to assess the overall management and ground situation of the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra. The Lieutenant Governor said the yatra is being conducted as per the Supreme Court mandated sealing of pilgrim movement on the tracks, and it is imperative to adhere to the registration schedule for safety and convenience of the pilgrims. The LG said this after it was revealed in the meeting that an unusually large number of pilgrims have been arriving without valid registration, causing long waiting times for pilgrims to undertake the yatra. During the meeting, it was stated that only pilgrims possessing valid registration for the designated date shall be permitted to proceed on the tracks leading to the holy cave shrine. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like conditions were reported from parts of Palghar district, affecting road and rail traffic. In Raigarh, major rivers including the Savitri, Kundalika and Ulhas are flowing at full capacity, while waterlogging was reported in Mahad. Continuous rain has also raised water levels in Panchaganga and other rivers in Kolhapur. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts for Monday and for Kannur, Kasaragod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Kerala, Lakshadweep and Karnataka coasts. In sports, in men's cricket, India have set a target of 191 for England in the second T20 International of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: हुमा हुमा हुमा

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां

प्यार कर। ये भरत व्यास के अपने विचार थे, सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला, कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरत व्यास पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

पंकज उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल अभी आप सुन रहे थे। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आईने ने आज फिर मुझसे एक सवाल किया, तेरी आंखों में ये किसका ख्याल किया। मैं मुस्कुराकर चुप रहा, दिल ने कहा ये वही है जिसे मोहब्बत ने कमाल किया।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंगे गजल। अल्फाज कागज पर यूं ही नहीं उतरते, दिल के जज्बात हर किसी से नहीं बिखरते। मोहब्बत का पहला इजहार आसान कहाँ होता है, इसलिए पहले ख़त को लिखने में वक्त तो लगता है।

इसी के साथ आज का कार्यक्रम रंगे गजल अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांद ने रात से कहा, चल आज मुस्कुरा लें, सितारों की महफिल में कुछ ख्वाब सजा लें, जो दिल में छुपे हैं बरसों से खामोश, आओ उन्हीं गीतों की जुबा उन्हीं गीतों को जुबान दे डालें। चांदनी रातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थाम लीजिए सुरों का हाथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है गीतों का वह कारवां, जहां हर धुन में एहसास है, हर हर बोल में एक कहानी है।

सफ़र खूबसूरत हो जाता है जब कोई दिल के साथ चलने वाला मिल जाता है। मंजिलों की अहमियत फिर कम लगने लगती है जब हम सफ़र ही ज़िंदगी की सबसे हसीन वजह बन जाता है।

ज़िंदगी की असली खूबसूरती उन लम्हों में छिपी होती है जो हम अपनों के साथ प्यार से जीते हैं। मोहब्बत वह एहसास है जो गैरों को भी अपना बना देती है, रूठे हुए चेहरों पर मुस्कान सजा देती है और हर सफ़र को आसान बना देती है।

0: अब किसी का हो गया।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपने कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।